0: स्किन और इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी चेहरे खे ख़ूबसूरती सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 07025683221 और हेल्पलाइन नंबर सखर रीजन 03147754462
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवरी वालों का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
3: डल आईंदी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज बाय इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: मोटरसाइकिल जोधपुर एतम अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोज एंड होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल करड़ कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएसमेंट इस जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा रोड मेहरापुर 05569
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तयाब आहिनि
5: हाणे आयरन स्टोर नेशनल हाई
6: प्रोप्राइटर बी 443 ऐं 001
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 0370-256-8321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 0314-775-4462।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
0: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
6: उम्मीद के दिए जलते हैं
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-386-5453।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
10: 03013992836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.
4: केपीएम इमरजेंसी ए गवर्नर राज की मंजूरी ला पार्लियामेंट जो गडियल इजलास 11 वगे थी रो है छह नुकाती एजेंडा जारी इमरजेंसी ए गवर्नर राज बाबत सदारती फरमान ऐवान में पेश किया वेंदो आईन जे आर्टिकल 232 तहत इमरजेंसी ए 234 तहत गवर्नर राज की मंजूरी ला धार ठारा पेश किया वेंदो सेनेट ए कौमी असेंबली में केपीएम में गवर्नर राज इमरजेंसी की मंजूरी दे चुकी है सिंध हुकूमत कणक रिलीज पॉलिसी जारी करे छी अज का फ्लोर मिल्स ए अटे चकिन के अढ़ाई मण वाली बोरी 1250 रुपये में जारी करण जो ऐलान पेरे मरहले में पुरानी कणक जारी करण जो फैसलो कयो वयो सेप्टेम्बर का घट में घट 6 महीनन ताई फाल रहंदड़ फ्लोर मिल्स ए अटे चकिन के ही कणक मिली सघंदी ओधर ते कणक जारी करण ते पाबंदी जस्टिस मुनीब अख्तर वक्ती चीफ जस्टिस के अहदे जो हलफ खणी वरतो जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस मुनीब अख्तर का हलफ खणायो चीफ जस्टिस यया आफरीदी निजी दौरे ते इंग्लैंड वयल 21 अक्टूबर ते वापस इंदो

मीर रज़ा के सलाह अदालती कमीशन की रिपोर्ट सिंध हुकूमत हवाले। कमीशन जो चवण है तो रिपोर्ट घरू खाते हवाले कई वही है। अदालती कमीशन 15 बुधन दौरान 49 जणन जा बयान रिकॉर्ड कया। मीर रज़ा जो लाश 29 जुलाई से गुल

0: ॻोठाणनि चयो आहे त उस्ताद जे रिटायर थियण खां पोइ स्कूल ॿिनि महीननि खां बंदि पयल आहे। ॿारनि जी तालीम तबाह पई थिए, स्कूल में सहूलियतुनि जी बि खोट आहे। जल्द उस्ताद मुक़ररु करे ॿारनि जी तालीम तबाह थियण खां बचाई वञे। ऐं बख्शापुर भरिसां घर में चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ामत ते घर धणी ज़ख़्मी, टे चोर बि सोघा। ॻोठ भुटो में चोरीअ दौरान मज़ामत ते गोलियूं लॻण सबबि घर धणी बदल भुटो ज़ख़्मी थी पियो। खेसि गणती जोगी हालति में रहीम यार खान इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। चोरी वारदात दौरान भाॻियनि टिनि चोरनि खे सोघो करे पुलिस हवाले करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर,
4: 0300-335-69। जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं ख़ूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं ख़ूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: हेल्पलाइन नंबर, हैदराबाद रीजन, 0370-256-8321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन, 0314-775-4462।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-69।
6: बहराण आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब
6: हाने अचो बहराण आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे।

0: पाणी
1: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज़ में एतमाद
1: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज़ GA FM 88 नेटवर्क

वो जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मेरी मनी हैपेंस ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट्स वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहे. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और चबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मोहसारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे लेजी आया नुसर बिस्मिल्लाह बोंजोर शाम नी हाउ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है.

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना हम इंक्लूड करेंगे जो कि होगा बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल. तो इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, इसी के साथ हम आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स.

अच्छा प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए. 8881 पे कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/gfmlarkana_fm88.8 एंड gfm88. ठीक है, तो ये दोनों पेजेस हैं जहाँ पे आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग इजीली मिल जाएगी. तो यहाँ पे आके आप ऑडियो स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं और वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं और सुपर वाइज प्रोडक्ट्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. और जब आप लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग पे आएंगे तो आपको सुपर वाइज के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसके अलावा जी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. और इसके अलावा सखर और लाड़काना वालों के लिए सुपर वाइज का हेल्पलाइन नंबर है 03147745562. लाड़काना नहीं सॉरी हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321.

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754466

How did you welcome back once again? I'm Sanjay Gazindi Gunzar here, sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics. Super White Products ki janib se ye khoobsurat safar jo ki aap tak pahunchaya ja raha hai, aur aap maujood hain, hum maujood hain, hum sab maujood hain ek dusre ke saath. And Super White ki products bhi, aur Super White ki products ke liye helpline number sabse pehle aap note down kar lo, uske baad main products batana shuru karungi. ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर है सुपर वाइट वालों का सखर और लाड़काना रीजन के लिए, दैट इज 03-14-77-544-62. ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों ने इस पर कॉल जरूर करनी है अगर आपको किसी भी कोई भी प्रोडक्ट की मालूमात लेनी है, अगर आपको ये जानना है कि सखर और लाड़काना में कौन सी शॉप पे अवेलेबल है, तो एग्जैक्ट हम उसी शॉप पे जाएं. ठीक है, ये भी आप पता कर सकते हैं. इसके अलावा आप कॉल करके अपनी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके बारे में जान सकते हैं, या अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपने नंबर नोट डाउन किया है मेरा प्रोग्राम सुन के, तब भी आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे. ठीक है, और जो हैदराबाद वाला नंबर है सेम उस पे भी इसी तरीके से आप लोग कॉल कर सकते हैं. तो हैदराबाद वाला जो नंबर है, हैदराबाद वालों के लिए मुमताज हसन खान का नंबर, तो उनका नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें. जहां पे अवेलेबल ना हो हैदराबाद में, वहां पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा लें. और इसके अलावा कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे दें, अगर प्रोडक्ट्स के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो तो वो भी ले लें. ठीक है, तो नंबर है जी हैदराबाद वालों के लिए 03-70-256-8-321. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट, बहुत अच्छे प्रोडक्ट और बहुत खूबसूरत और बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, करने चाहिए. क्योंकि सुपर वाइट के जितने भी प्रोडक्ट हैं आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए बनाए गए हैं. सो सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम, और सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, इसके अलावा सुपर वाइट की फेस वॉशेज जिसमें विटामिन सी फेस वॉश, और इसके अलावा जी स्ट्रॉबेरी फेस वॉश आता है सुपर वाइट वालों का, सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश, इसके अलावा सुपर वाइट का राइस फेस वॉश, और इनके सोप्स भी आते हैं. ठीक है, सुपर वाइट का राइस सोप आता है, ऑयल कंट्रोल सोप आता है, इसके अलावा जी सुपर वाइट वालों का ऑयल कंट्रोल सोप भी आता है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्ने क्रीम आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रैकल क्रीम भी आती है, और सबसे मजे की चीज जो है इनका ब्यूटी सीरम बूस्टर, और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर के साथ साथ सुपर वाइट सीरम भी आता है जी, सुपर वाइट राइस सीरम. ठीक है, सुपर वाइट राइस सीरम भी आता है और सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर भी आता है. अब ये सब क्या है वो आपको मैं बताती जाऊंगी. ठीक है, तो सुपर वाइट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिसमें सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम तमाम उन लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप ऑयली है, और स्किन टाइप ऑयली होने के साथ साथ उनके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं और कलर बिल्कुल डल है, कॉम्प्लेक्शन डाउन है, अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, गोरा चिट्टा रंग करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिल रही है जो कि बिना साइड इफेक्ट चिट्टा गोरा रंग कर दे और खूबसूरत बना दे, अब सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि आपके इन तमाम मसले मसाइल का हल है. क्योंकि बहुत सारे लोग, चाहे मर्द हो खवातीन हो, ऑयली स्किन की वजह से एक्ने भी बहुत ज्यादा आ जाती है स्किन पे, एक्ने आने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा डाउन दिखने लगती है. ठीक है, आपका चेहरा कभी भी फ्रेश नजर नहीं आता इस ऑयल की वजह से. तो इस ऑयल को कम करने के लिए और अपनी डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम. ठीक है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी, आपकी रंगत को निखारेगी, फेयरनेस देगी, और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट. तो बहुत सारे लोग जो कि इसके फायदे तो इतने दिन से सुन रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डाउट ये भी है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या विदाउट एनी साइड इफेक्ट हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे. तो बिल्कुल विदाउट साइड इफेक्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे.

सुपर वाइट की ऑल फ्री ब्यूटी क्रीम जिसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर। सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्रीम के रिजल्ट है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप खूबसूरत नजर आएंगे। ठीक है, तो सुपर वाइट का ये ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, और ऐड करने के बाद अपने क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। और मजीद इसके रिजल्ट अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग सुपर वाइट की सुपर वाइट का फेस वॉश भी यूज करेंगे, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। ठीक है, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करेंगे, इस डैज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज ही मार्केट जाएं और बाय करें। तो मार्केट जाके क्या बाय करना है, सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश और साथ में सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर। अच्छा, ब्यूटी सीरम बूस्टर की खासियत ये है कि ब्यूटी सीरम बूस्टर जो है ना आप लोग क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और किसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग इसको, अपनी ब्लीच क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग फेशियल्स जब करते हैं तो उनके स्टेप्स में भी जो है वन बाय वन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक पिंच। ठीक है, एक पिंच हर स्टेप में, सो डैट आपको इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके जो फेशियल के या जो आपके ब्लीच क्रीम के रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और आप दिखेंगे इंस्टेंटली बहुत ज्यादा खूबसूरत।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेंगे. हेलो,
1: सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: दो दिनों के बाद हाफिज लखमी बात कर रहा हूँ.
0: हाफिज लखमी, कैसे भाई? ठीक ठाक
1: अलहमदुल्लाह. ठीक ठाक
0: जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सा है?
1: जी जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं.
0: ओके, सुपर वायर के प्रोडक्ट लिए हैं भाई आपने?
1: जी जी, मैंने कुछ लेने जाऊंगे
0: ले लिए हैं. कौन से लिए हैं?
1: ये जो सुपर वायर की टॉपी ब्यूटी क्रीम होती है, मतलब ये टॉप होता है, मतलब मैं तो आंखों से नहीं देखता हूँ, ग्रहण हूँ.
0: नहीं नहीं, आपने कौन से लिए? होते तो हैं, लेकिन आपने कौन से लिए हैं?
1: ये सुपर वायर वालों का जो ब्यूटी क्रीम मिक्स में जो आप बताती हो, वो तो आप बताती हो कि उसमें यूज करें मिला के.
0: अच्छा, ब्यूटी सीरम लिया है?
1: जी जी.
0: अच्छा, तो आप किस में मिक्स करेंगे इसको? क्रीम तो आपने ली नहीं है.
1: क्रीम आयल लेने जाऊंगा तकरीबन शाम को.
0: तो साथ में ले लेनी थी ना, किराया बच जाता. अच्छा, और कुछ कहेंगे? अच्छा, गाना सुनाएंगे? हाँ, गाना गाना.
1: दुश्मन खिला के मिले, ओ बेवफा सोचे कहा क्या मिले, ओ बेवफा सोचे कहा. ये मेरा गाना है, लेकिन आप मेरा गाना प्ले नहीं करती हो. जो भी मैंने आपको गाने सुनाए, आप मेरे गाने कोई भी प्ले नहीं करती हो.
0: कोई भी प्ले नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा. हाँ, अगर आपने सैड सॉन्ग सुनाया होगा तो वो प्ले नहीं किया होगा.
1: पहले मैंने उस दिन आपको गाना सुनाया था, एक सोनो मुझी नजर में आए.
0: ये वाला मैंने प्ले किया था. हो सकता है मैंने लेट प्ले किया हो, लेकिन मैंने प्ले किया था, इतना मुझे याद है. और ये वाला जो गाना है, ये मैं प्ले कर चुकी हूँ, आप सुन सकते हैं इसको ऑन एयर. ठीक है,
1: मेरे दोस्त है.
0: जल्दी से
1: नौशरफ रोड से माशाल्लाह नूर बलद सुनती है, बड़ी शौकीन है, और माशाल्लाह बड़ी शमन मीरानी की फेमस है. उसको सलाम, सरदार साहिबा को सलाम, आपसे सामल डिलू, और आपसे जानवा दबरो, और आपसे गताउला मुरो, और जो भी सुन रहे हैं मेरे दोस्त, उन सबको सलाम, क्योंकि शमन मीरानी का मैं भी आशिक हूँ.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और ये रहा आपका गाना.

0: के हो तो आवाज 88.8
1: सखर के
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशनी ग्लो जल्द हाइड्रेट करे संगत बेहतर बनाने वाली

0: अंतर्गत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462।

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड़ी
4: मुझे दुकलेस हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर,
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. जिंदगी गुलजार है sponsored by Super White Aksa Cosmetics. Super White Aksa Cosmetics जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप लोगों के लिए. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488. साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो कमेंट और मैसेजेस की तरफ मूव करते हैं. सरफराज अली का कमेंट आया है. सरफराज अली गड़ी बरोज फ्रॉम कराची, वेलकम टू द शो. मुनव्वर अली कहते हैं लाजवाब शो. सरफराज कहते हैं गुड मॉर्निंग, दिस इज अल्ताफ अली गड़ी बलोच फ्रॉम कराची. ओके, आर्ज मोहम्मद गोला हमें सुन रहे हैं जी जिला जैकबाबाद से. इसके अलावा नजीर खोसो हमारे साथ साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच नजीर खोसो. और इसके अलावा रशीद खोसो भी हमें सुन रहे हैं. थैंक यू रशीद खोसो. हैदराबाद से आप हमें सुन रहे हैं. हैदराबाद में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं. अगर ना मिले तो हेल्पलाइन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं हैदराबाद वालों के लिए. जो सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप डायल कर सकते हैं 03702568321. ठीक है, ये नंबर है, इसको डायल करेंगे हैदराबाद वाले. और जो सखर और लाड़काना वाले हैं वो डायल करेंगे हेल्पलाइन नंबर सुपर वाइट वालों का 03147754462. ठीक है 03147754462.

इसके साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो आपको बताऊंगी. तो आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह होगा कि पहले हम गाना प्ले कर दें क्योंकि हमारा गाना जो है ना ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो रहा है. सो इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ नहीं, इसके साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ

0: ओके, आज का टंग ट्विस्टर है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं। ठीक है, ये कहना है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं, ये कहना है। और देखते हैं कि ये ज्यादा ज्यादा कौन कह पाता है। 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल करेंगे। ठीक है, चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें और कॉल करें। तब तक मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताती हूँ जी। और फॉर्मूला जो है ना, वो आप लोग बना सकते हैं सुपर वाई के प्रोडक्ट से ही। सुपर वाई के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे आप एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको एक अदद बेहतरीन फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं मिल सका है। अगर आपने बहुत सारे फॉर्मूला ट्राई किए हैं और उससे आपको साइड इफेक्ट हुए हैं, तो अब नहीं होंगे, क्योंकि सुपर वाइट वाले कभी भी अपनी क्वालिटी और मयार पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और इसी वजह से इनके प्रोडक्ट सुपर से भी ऊपर हैं। तभी इन्होंने नाम भी रखा है सुपर वाइट। ठीक है, सुपर वाइट के लिए, सुपर वाइट फॉर्मूले को बनाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेनी है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम एंड एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम। ठीक है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम। ठीक है, एक्नी क्रीम और ब्यूटी क्रीम दोनों ही ऑयल फ्री में आती हैं, ये ले लें। तीसरी चीज आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर, और इन तीनों चीजों को एक जार में अच्छे तरीके से निकाल लें, क्योंकि जो एक्नी की क्रीम है इनकी, वो ट्यूब की वेरिएंट में आती है, उसको अच्छे तरीके से निकाल लें। इसके अलावा जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है वो आप लोग लास्ट में इसमें ऐड कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि तमाम चीजें आपस में यकजा हो जाएं, और जब ये यकजा हो जाएं तो इनको जार में जो है आप लोग स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करें सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से। सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने के बाद ये फॉर्मूला रात को सोते हुए अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें डेली बेसिस पे। 3 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे, और 3 दिन में आप कहेंगे कि वाह क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो खूबसूरत बना देने वाले रिजल्ट्स होंगे और हसीन बना देने वाले रिजल्ट्स होंगे, और एक हफ्ते में विजिबल वाजे फर्क आप देख सकेंगे। आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे है। ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट डाउन करें, सखर और लाड़काना वाले 03147754462। इसके अलावा हैदराबाद वाले डायल करें 03702568321। अच्छा, टंग ट्विस्टर एक बार फिर से आप सुन लें। चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं। ठीक है, ये कहेंगे। नेक्स्ट कॉलर लेने जा रही हूँ। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: आबादी इमाम जी, मैं समर वाले, क्या हाल है पटेल?
0: कौन से प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई मेरे?
1: जिंदगी गुलजार है।
0: तो आपने इसको इतना मतलब के दुखी अंदाज में क्यों गाया है?
1: आयो तानेला दवानी है वो याद आ गया।
0: चले, मेरी नाइस। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज करते हैं? सुपर वाइट जब प्रोडक्ट यूज करना आयो खरीद लिया
1: रे सो सोमर दिया क्या सुनो इन स्टाइला कर करना है
0: कडे गंदो खरीद
1: सोमर दे दी
0: सोमर जड़ी। ओके, टंग ट्विस्टर बुधो आहे
1: बिल्कुल बुधा पर ये टंग ट्विस्टर तांगे नहीं दो ये तांग ताज नहीं बुधाई नहीं तांगे नहीं
0: तवा के नहीं दो चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं, ये कहेंगे। एक और कॉलर। हेलो, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो,
1: आई लव यू।
0: اللہ حافظ.
1: 3333 1
0: چاچا چمچم چٹپٹی چٹنی چٹکارے لے لے کر چاٹتے ہیں.
1: بس بھائی جلال اساں کے بدھا بھاجی.
0: اوکے اللہ حافظ. 03000 1 3 4 8

0: बताओ कि जी एक और कॉलर. हेलो हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: पवन चाचा.
0: ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी हाँ.
0: ओके कौन सा सुन रहे हैं?
1: सुपर वाइट.
0: सुपर वाइट का प्रोग्राम सुन रहे हैं. सुपर वाइट के कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं? कौन सी क्रीम?
1: नाम समझ नहीं आ रहा, बताइए.
0: सुपर वाइट ही तो है नाम इसका.
1: हाँ सुपर वाइट.
0: ओके जी ये सुपर वाइट ही नाम है. सुपर वाइट का शो है तो सुपर वाइट ही नाम हुआ ना क्रीम का.
1: जी हाँ
0: है ना. अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे? टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे? चले फिर प्रोग्राम सुने. थैंक यू सो मच. और मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो कि प्रोग्राम सुन रहे हो और जिन्होंने टंग ट्विस्टर सुना हो, वरना उन लोगों की मेहनत जाया हो जाती है कॉल मिलाने की जो कि टंग ट्विस्टर सुनते हैं और फिर बोलने के लिए कॉल करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी कॉल नहीं लग पाती. सो मैं ऐसे लोगों को मौका देना चाहती हूँ जो इस सेगमेंट के लिए ही कॉल कर रहे हो. एक और ट्राई करेंगे फिर हम गाने की तरफ चलेंगे. हेलो वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: अरशद मरी.
0: अरशद मरी
2: दीदी
0: कैसे? ठीक ठाक. कितने अरसे बाद कॉल कर रहे हैं?
2: बिल्कुल जो है ना बहुत अरसे के बाद ना आज ही मैंने आपका शो सुना और कॉल लगाई है.
0: चले जबरदस्त. अच्छा और प्रोग्राम सुन रहे हैं किसके दामन से है?
2: प्रोग्राम आपका अभी मैंने सुना थोड़ा सा और कॉल भी आपको ना फौरन ही लग गई. पहले ही नंबर और लग गई.
0: अच्छा टंग ट्विस्टर है अगर मैं बताऊं तो आप बोलेंगे?
2: अच्छा टंग ट्विस्टर कौन सा है? कोशिश होगी इंशाल्लाह.
0: आपने कहना है कि चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर जाते हैं.
2: ये तो ये मुश्किल है.
0: चले ये मुश्किल है. चले जो आसान है वो बता दें. जो आसान है वो बता दें जल्दी से.
2: आसान बस आपका शो है, जबरदस्त शो है, सुन रहा हूँ. और अभी दोस्त हैं सुन रहे हैं मेरे साथ, रबर नो फिल पोड रहे, अली शेर चना है और भी दोस्त हैं, बस बहुत सारे दोस्त हैं. और आपको सलाम, सबको सलाम.
0: ओके जी थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. और इसी के साथ हम

ओके जी, इसी के साथ हम गाना प्ले कर रहे हैं. हम सुनते हैं जी कोक स्टूडियो का लेटेस्ट सॉन्ग डेट इज रंगीन. ठीक है, इसको सुनते हैं.

0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
1: मीरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मीरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद कयो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मीरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 0370-256-8321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 0314-775-4462 खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000072234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ ये चो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02।
8: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
9: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
10: 03013992836।
2: मोहम्मद उमेर गोरी 03019155724।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
12: बेवफा चांडिया कंबर वारा तू छाका तो पंजो शहर छदी।

Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics. Super White Products by Aksa Cosmetics और Super White के बहुत सारे प्रोडक्ट जिनसे आप हैंड एंड फीट फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लें. हेल्पलाइन नंबर है सखर और लड़काना वालों के लिए 03-14-77-544-62. इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो मुमताज हसन खान से राब्ता करेंगे. उनका नंबर है 03702568321. सखर और लालकाना वाले डायल करेंगे 03147745462.

इसके अलावा जी एड्रेस कर रहे हैं, सेंड हमें मैसेज कर दिया है महबूब अली मोरो सिटी से, अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, आपका प्रोग्राम सुपरवाइज जिंदगी गुलजार है वेरी नाइस है और आप जलाल को प्ले नहीं है। उधर बलोच ने बहुत सारे मैसेज किए हो कुछ दिनों के, मैं बिल्कुल यही थी, कहीं गायब नहीं थी, ठीक है, थैंक यू सो मच सफदर बलोच। इसके अलावा सफदर बलोच ने बहुत सारे शेर लिख भेजे हैं हमें, थैंक यू सो मच सफदर बलोच। इसके अलावा गाने की तरफ एक और सुपरवाइजर

0: ओके जी, एक और कॉलर। हेलो। ओके, हेलो हेलो।
1: अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। सरदर्द कैसी हो? मैं
1: आप
0: बहुत अच्छी हूँ सरदर्द। तुम्हारे लिए इतना अच्छा टंग ट्विस्टर लेकर आई हूँ, किधर गायब हो?
1: मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इतनी दिनों से नहीं सुन पाई आपका शो, आज सुन रही हूँ।
0: अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है तबीयत को? थोड़े
1: मलेरिया हुआ है, मलेरिया
0: से जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही।
1: हुआ था मुझे।
0: मलेरिया हुआ था? अच्छा, अब कैसी हो? अब ठीक हो? चलो जबरदस्त, अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी से सेहतियाब करे। और तुम पहले से भी ज्यादा अच्छे अच्छे टंग ट्विस्टर बोलो, और आज का टंग ट्विस्टर सुनाए। एक बार रिपीट करो। चाचा चमचम चटपटी चटनी, चटखारे ले लेकर चाटते हैं। वाह, मलेरिया में भी इतना अच्छा कह लेती हो टंग ट्विस्टर।
1: मलेरिया में तो स्पीड ज्यादा हो गई है।
0: मलेरिया से स्पीड ज्यादा हो गई है?
1: हाँ, वैसे मेरी आवाज ना ठीक से आ रही है।
0: किसी स्पीड वाले मच्छर से मलेरिया हुआ होगा। है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ सरदर्द, कुछ और कहना है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Z300 01144888। और जो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार कॉल करने के बाद अगर उनकी कॉल दोबारा आती है तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? ड्रॉप सीन हो जाएगा। इससे पहले कि हो जाए, मैं आपको पहले से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है? 03000

11-3488 इसके ऊपर कॉल और टंग ट्विस्टर और साथ साथ सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर सखर और लाड़काना वालों के लिए स्पेशली सखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03-14-77-5-4-6-2। ठीक है, इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे 03-70-2-5-6-8।

ओके एक और कॉलर. हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? ओके कहाँ से बात कर रहे हैं? ओ कॉल ड्रॉप हो गई. अच्छा साथ साथ सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग. ये वो वेरिएंट है जिसको आप अपनी कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं तो सुपरवाइज की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम प्लस सुपरवाइज का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश यूज़ करें.

ओके, तो स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम के बारे में हम बात कर रहे थे. तो सुपरवायर की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तैयार की गई है कोरियन फार्मूला के साथ. और अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले सुपरवाइट की कोरियन फार्मूले से तैयार की गई स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, जिसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं, ये बनाते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको 3 दिन में विजिबल नज़र आते हैं, ठीक है. तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोरियन एंड ग्लास स्किन हो, सो इसको यूज़ किया जा सकता है. प्लस अगर इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल बनाना चाहते हैं, तो सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. और इसके अलावा जी, आप इनके सोप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं. तो सुपर वाइट का ब्यूटी सोप, ऑयल फ्री ब्यूटी सोप. इसके अलावा सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी सर से लेकर पाँव तक कोरियन ग्लास स्किन होना पॉसिबल है, ठीक है. लेकिन आपने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है. और अगर आप कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं, उसमें भी आप सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करके आप उसके रिजल्ट्स को डबल से ट्रिपल बना सकते हैं और रिजल्ट्स को इनहेंस कर सकते हैं. सुपर वाइट का राइस सीरम भी ऐड किया जा सकता है सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में, ठीक है. तो ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे पहले 3 दिन के अंदर. और अगर कहीं पर प्रोडक्ट्स ना मिल रहे हों तो हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है. हेल्पलाइन नंबर है 03147754462. इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे 03702568321, ठीक है. इस पर आप करेंगे मुमताज हसन खान का नंबर है 03702568321. इसके अलावा सखर और लालकाना वाले डायल कीजिए 03147754.

फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हो चुका है, सो हम जाएंगे. और कल आने के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो जाते हैं, और जाते जाते वही बात कि ख्वाब देखने के लिए सोना ज़रूरी और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना इससे ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है. अच्छा, लास्ट में ना कुछ कमेंट्स मुझे नज़र आए हैं. जवार बच्चल हमें सुन रहे हैं, निज़ाम भट्टी काजरी हमें सुन रहे हैं, इसके अलावा जी अली रज़ा लगारी हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद सलमान कुंबर से हमें सुन रहे हैं. बाजी मुझे आप गाना सुना दें. ठीक है, मैं आपको गाना सुनाती हूँ. ठीक है, जाते जाते आपको गाना सुनवा के जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं. और ये अभी तक के सारे कमेंट्स जो कि आप लोगों ने भेजे और मुझे रिसीव हुए, महबूब अली मोरू सिटी से हमें मैसेज कर रहे हैं, सुपर वाइट का शो जिंदगी गुलजार है, इनको बहुत अच्छा लगता है. और इसी के साथ फाइनली लास्ट गाना हम प्ले करेंगे, और दिस इज मी आर जे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद एंड बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-120
5: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिंद खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिंद मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिंद खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: हेल्पलाइन नंबर
5: अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स

0: ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-1623-793
1: इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निकली एंड चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 0370-256-8321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 0314-775-4462 जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: आई मोहम्मद उमर गोरी 0319 1557724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
9: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता।

विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर नूरियाबाद और लाड़काना की लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि जितनी भी सुनने वाली समाज है वो सब लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं ऑलरेडी। ओके जी, अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन ही, आप सब लोग ही ट्राई कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप लोगों को बताती चलो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूला वो होता है जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, आपकी जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार करी है। लेकिन साथ साथ अगर बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या चीजें ऐड की गई है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो कि आप लोगों के चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को देती है ऐसा निखार, ऐसी खूबसूरती जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आप कोई महंगा सा फेशियल करा के आए। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपके चेहरे पर जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे या फिर जितने भी क्रेकल्स हैं, रिंकल्स वगैरह हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है और आपको रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना, अच्छे वाले रिजल्ट्स, परफेक्ट वाले रिजल्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को सेफ रख सके, यानी कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर सके, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बाउंड्रीज रखी गई है कि हाँ लड़कियां लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या लड़के लगाएंगे, लड़कियां नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप ऐसा कीजिए, अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज करेंगे तो आपको जनाब इतना प्यारा निखार मिलेगा, इतनी प्यारी जो है ना आपको खूबसूरती मिलेगी। इसका जो नरम और खूबसूरत एहसास है ना, आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देता है, आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है और अच्छी तरह से आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है। आपकी जल्द की शख्सियत जो है वो ऐसा फील होता है कि भाई ताजगी का एहसास हो चुका है, आप हमेशा रिफ्रेश जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। आपकी स्किन जब फ्रेश होती है ना तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप कहीं जा पाते हैं सुकून से और आपको एक तसल्ली सी होती है कि भाई हमारी स्किन जो है ना अब बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपके चेहरे पर कोई भी इस तरह का एक्ने नहीं बचा, कोई भी इस तरह का निशान नहीं बचा, कोई भी रिंकल नहीं बचा, अब आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ अफोर्डेबल और कुछ ऐसा जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, ये दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी। और साथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ही कमाल के, क्या ही वाओ वाले जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो आपके चेहरे पर जो है ना ग्लो और निखार आना स्टार्ट हो जाता है। आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो भाई अच्छा फील करेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन के पर जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना वो भी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल अपनी स्किन को अच्छा फील कराइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए और अपनी जरा जो है ना खूबसूरती का स्टैंडर्ड जरा हाई रखा करें। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बस आप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से जो ऐसा होता है ना कि अगर आप महंगे महंगे फेशियल्स कराने जा रहे हैं और आप लोगों को ऐसा होता है कि भाई फेशियल तो आपने हफ्ते हफ्ते में कराना है या महीने महीने में कराना है, लेकिन ऐसा वाला सीन बना दें कि आप बस मार्केट जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप घर बैठे लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये वाला फायदा आपको मिल रहा है कि एक तो ये मुनासिब पैसों में आपको मिल रही है, दूसरा आपका टाइम भी बच रहा है और दूसरा आपको रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं वो बहुत से भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। उनके अलावा तव्हां खे जेके नंबर्स ॿुधाया वञनि था प्रोग्राम जे अंदर, नंबर से तव्हां राबितो कंदा, ही राबितो करण खां फौरन बाद ही पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो। ऐं पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्यालु रखो बाबा, इहो तव्हां न रखंदा त केरु रखंदो? अगरि तव्हां पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्यालु न रखंदा न त दुनिया बि तव्हांखे ईअं सम्झंदी त तव्हां ईअं आहियो बसि।
بھائی اپنا خیال رکھیے, اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیے اور اپنی خوبصورتی کو سب سے آگے رکھا کرے. اور ان کے علاوہ اگر تاں سانے پروگرام میں موجود ہے تو آنکھے چوندا بھلی کرے آیا کھوڑ ساری گالیوں آئیں جکے تواں سان کندا سی تواں جا فیڈ بیکس بھی اساں کے ملندا ونندا پوسٹ کے تواں لائک اینڈ شیئر کندا ہلو ائی مکے بدھا تا تواں ڈی سکن بیوٹی کریم استعمال کرے ڈٹھیا یا انا تے کون کرے ڈٹھیا. ان کے علاوہ جکو مو جواں کا سوال پوچھا تا تواں ننڈ پن میں جدی تواں شرارتوں کندا ہویا ائی تواں کے تواں جا گھر وارا جکیا ت سزاؤں دیندا ہوندا ظاہر گالا سزاؤں دیندا اگے تا بابا یہ تھیندو نا پانچ بارن کی جکے والدین الہی سزاؤں دیندا ہویا ائن سزاؤں میں وری کا سزا ایڑی بھی تھی سگے تھی جکہ تواں کی لگندو جے ہانی تواں یاد کنا ہوندا تواں چوندا ہوندا پپا ہی ڈاڑی فنی سزا سا کی ملی ائی تواں ان تے کھلندا ہوندا ہانی ہی بھی کا سزا ہی جکہ سا کے سن والدین دیندا ہوا. سو مکھے بدھایو جلدی ایڑی کوئی سزا تواں جے ذہن میں آہے جکہ تاں کے ننڈپن میں ملندی ہو جے ائی تواں ان کی ہنمل یاد کرے منی من مسکرائندا ہو وری چوندا بابا ہی بھی ہانی کا سزا ہوئی. سو مکھے بدھایو 888218 Facebook تے تاں مکھے جوائن کنا ہلو تھا تواں جا فیڈ بیکس بالکل مکھے ملن پیا پینل تے بھی تواں جا میسجز آہن پر ہتے کامنٹ آہی جی ماں جلدی کامنٹ انلا پڑھنیا ورنہ تواں جا کامنٹ جگہ نہ وہ متھے بھجی ویندا ہے. سو محمد زمان بھائی ہمیں ارشاد موجود کہتے ہیں گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم مائی سویٹ بوا جی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں پیاری بھائی. اچھا ہدایت اللہ ہاں ویسے مجھے زیادہ یاد نہیں ہے. اور کشور بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام منجا خوبصورت ادا. وعلیکم السلام مجھا سونا ادا. زین کہتے ہیں کہ تیرے ہونے سے حسین ہے یہ کہانی دل کی, تیرے ہونے سے ہے آباد فسانہ دل کا. ارے واہ کیا بات ہے. اور طارق بھائی لکھتے ہیں کہ گھوٹکی میں ہمارے دوست سدانی ٹریڈرز گھوٹکی, دیپک بھائی, شکیل, رتک, موہن, اکبر علی بکٹی, فراز علی, یہ سب ہمارے دوست ہیں, ڈسٹریبیوٹر ہیں گھوٹکی میں. اوکے جی, یہ سارے ہماری جو ٹیم ممبرس ہیں جن میں آپ لوگوں کے لیے دیپک بھائی موجود ہیں, شکیل ہیں, رتک ہے, موہن ہے, اکبر بھائی ہیں, فراز ہیں, یہ سب ڈسٹریبیوٹرز ہیں جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس. تو جتنے بھی گھوٹکی والے لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ وہاں سے جا کر یعنی کہ سدانی ٹریڈرز سے جا کر آپ جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹش کے پروڈکٹ جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتے ہیں, آپ کو آرام سے مل جائیں گے. اور ان تمام بھائیوں کو ویلکم کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ مہر عرفان سیال صاحب کہتے ہیں کہ سلام میم, دیپک راج بھائی مائی ڈسٹریبیوٹر گھوٹکی سے ڈیڈیکیشن سانگ ٹو دیپک بھائی اور ان کی ٹوئنس ڈاٹرز ہیں ویرا اینڈ ویرتا, کیوٹ پرنسز ماشاء اللہ. اوکے جی, دونوں پریوں کے لیے پیارا سا گانا لگا دیں گے, دیپک بھائی کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں گے آپ کی طرف سے. اور بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیپک بھائی ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اور یہ میرے پاس ایک بڑا پیارا گانا موجود ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سب مل کر انجوائے کریں گے, لیکن یہ والا گانا ہم مہر عرفان سیال صاحب کی طرف سے دیپک بھائی کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے. اور ان کی جو پیاری سی دونوں ڈاٹرز ہیں نا ویرا اینڈ ویرتا, ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ, خوش رہیں اور انجوائے کریں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس.

सही कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ये गाने ऐसे गाने हैं हम जितने भी सुन ले हमारा दिल ही नहीं भरता. बहुत प्यारा बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है. और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए जिसमें आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है. तो जो लोग ऐसा होता है ना कि क्रीम ही नहीं लगा पाते हैं, चलें आप ऐसा वाला सीन है कि चलें आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है. अगर आप फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश, ये सब लोगों के लिए है, ऑल स्किन टाइप के लिए. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है.

ओके जी, खो गए सपनों में हम, लेकिन आपने जरा डेज कंप्यूटर क्रीम लगाकर उसकी खूबसूरती में खो जाना है। और किशोर भाई कहते कि मुझे बचपन में फनी सजा तो न मिली हुई, पर यादगार सजा, खतरनाक सजा मिली, जे जो मूसा को तालक भी न हो। अली भी थी दो हो वैसे। मोहम्मद समान कहते हैं टॉपिक अबू, आज लिखते हैं कि अबू कमरे में बंद करने की धमकियां देते थे और तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा, जैसे ही कमरे में बंद करता था तो हम ब्रो आपस में मुर्गा बनने की अच्छा वो कोशिश करते थे। और टॉपिक अच्छा कहते हैं अच्छा प्रैक्टिस करते थे ताकि अबू अगर मुर्गा बनाए तो फिर हमें कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है। गदा हुसैन लिखते हैं कि जी सिद्रा आज कुछ भी हो जाए लेकिन आपने गाना मेरा लगाना है। जी बिल्कुल, आज आपका गाना लगा देंगे। इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं आप, मुझे बताएं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया या अभी आपके जो ये दोस्त हैं मोहम्मद बख्श मल्ला भाई उनकी दुकान पर अवेलेबल नहीं हुए हैं। और कहते हैं कि नूर दीन अबड़ो शाका अबड़ो विलेज आंदल खान मला से आप हमारे साथ मौजूद है। ओके हो गया जी। फकीर साहिब शेख लाड़काना से हमें सुन रहे हैं, वेलकम। निसार मोलाई हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हमारे पुराने लिसनर हैं। ओके जी, सपनों से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे सपनों की जो दुनिया है ना वो बहुत सुंदर है और ये जो बाहर की दुनिया है ये बड़ी खतरनाक है। तो ऐसा लगता है हमें कि भाई हमें सपनों की दुनिया में ही रहना चाहिए। और समाटो गोपांग कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा, कैसी हैं आप? कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू, वेलकम। आप बताएं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज किए कंबर सिटी में तो मिल रहे हैं, तो आप कब ले रहे हैं मुझे बताइएगा। गाना सुनना चाहते हैं? ओके जी सुना देंगे। अच्छा निसार मोलाई भाई, आपने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, ठीक है जी, आप हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं, 2013 से मेरा शो सुनते हैं। ओके लेकिन मैं तो तब आई नहीं थी एफएम पे। वेल आपको वेलकम कहते हैं। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा, ठीक है निसार।

बिल्कुल जी मजा था कबाब पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पो तमाम लगाई खून बुधाईंदा हलो मुखी मीर ममताज बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ब्यूटी शो आपका अच्छा है स्किन केयर करनी चाहिए नाइस है वोट दाद मोहम्मद बिरोही मदेजी से मीर मोहम्मद बिरोही अशफाक अली बिरोही सजाद अली बिरोही भाइयों को वेलकम कहते हैं वासा भाई कहते अधी सिडो जवाब एक दफो अबे सजा दिनी हुई बदी छड़ियो हुई पूरो कलाक अधी आई मामा ही चाचा कन्न गोशी कराइंदा हुआ अच्छा ये तो वैसे आम सी सजाएं हैं मुझे लग रहा है कोई ऐसी सजा बताएं जो आपको मिली अपने बचपन में आपको लगता है कि ये थोड़ी वक्री सजा है भाई अच्छा निसार भाई हमारे घुनी वाले लिसनर थे अब उन्होंने अपनी खामोशियों को तोड़ लिया है अच्छा किया है आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं थैंक यू बस आप एक काम कीजिएगा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कीजिएगा दोनों चीजें साथ में लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे दोदा हालिया में सुन रहे हैं हेलो भाई अच्छा गदा भाई कहते हैं गदी सिद्रा देख लो आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अभी मोरो वालों ने आपका प्रोग्राम बंद कर दिया है अब आपका प्रोग्राम कैसे सुने मोरो वालों ये क्या है पहली शिकायत आपकी मुझे मिली मोरो वालों की तो मैं तारीफ करती हूँ मोरो वाले जो हमारा अच्छे से प्रोग्राम कनेक्ट करते हैं भाई तुम्हारी शिकायत था न मिलन गुर्जे सही प्रोग्राम कनेक्ट कर अदा मोरो वालो अच्छा रमजान भाई भी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से कमेंट्स लिखा करें इतनी लंबी चौड़ी शायरियां भेज देते शायरियां जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में भेज दिया करें ठीक है

अरे किशोर भाई कहते हैं कि अदा शमन जो गानो बुधराए फकीरानी तबियत जो मुखे दिल बर मिली वियो आ ओके डेडिकेट टू माय स्वीट वाइफ छा गाल कजे भाभी के डेडिकेट वास साईं वास वास भाई कहते हैं नंढपण में ना मां वडो शरारती हुआ से घर वारन सा कावड़ कंदो हुआ से वडो घर जो ज्ञान कंदो हुआ से आईली वो कुटकी भी जाम खाइंदा हुंदा छडे त कोने दींदा हुंदा घर वारा अच्छा दाऊद अली पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कराची से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम कहते हैं अच्छा दाऊद भाई लिखते हैं कि इस मतलब की दुनिया में तो मोहब्बत को मत ढूंढ खुद को बर्बाद करने की वजह मत ढूंढ यहाँ पर तो हर कोई अपने आप को वफादार बनाए बैठा है दाऊद तो जो खुद को बेवफा बनाने की वजह मत ढूंढ सब सुनने वालों को मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम जी समाटू तांचो गानो भी हलायूं और ये जी अरबेलो चाचड़ भाई घोटकी से हमें सुन रहे हैं अरबेला भात घोटकी मां जेको आने डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सगो था घोटकी में तवां जला डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा अवेलेबल कराए छडिया है तो घोटकी में दीपक भाई वेठो आए उन वटा तवां डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश वठी सगो था चाचा खालिद कहते हैं सजाएं मिलना तो अब स्टार्टेड बचपन में तो हम मासूम थे ये टॉपिक आंसर क्या बात है चाचे की हाँ सजाओं मिलन थी अरे बाबा केर चाचे के सजाओं दे तो

निसार भाई कहते हैं मुझे बड़ी अच्छी सजाएं मिली थी, उनको मैं जिंदगी भर याद करता हूँ. कौन सी सजाएं मिली ये भी तो बताएं. चलो मजा कंदा सी पर तमा इते वेओ इते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो ना कोई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा वापसी जल्दी मोड़ी तमा नींदासी तमा कारी ने वंजो इते बैठा हो जो सने प्रोग्राम बुदंदा रहो बाबा आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन मिले थी त नंबर ते राबतो करे वठो आई पाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वठो. मां ही वनी ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर आहे बाबा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स 57 सो लगाईंदा रहो सुना थींदा रहो.

0: This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN News.
5: Brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
6: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: इसके ऊपर तीन क्लासेस थी 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और दूसरे 20 में शहीद हो चुकी है और 47 से करीब जख्मी है 25 जो है उपचित किया गया लेडी रेड हॉस्पिटल 110 मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी उसमें बच्चे थे और अभी मजीद हमें खतरा है अल्लाह ताला हिफाजत करे लेकिन हालातों का खदशे ज्यादा है कोशिश कर रहे हैं थोड़ी आपके सामने तंग गलियां रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश बढ़ती
8: के पी जे शहर पेशावर में टे मार निजी स्कूल की छित किरी पई 29 शागिर्दन समेत 30 जणा दबजी फोत 53 जख्मी पुलिस स्कूल के मालिक के हिरासत में वठी छो डीसी पेशावर है मलबे हेठा दबियल समूरन शागिर्दन उस्तादन के बाहर कढ़ी वो है वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी बियन पारा फोतल शागिर्दन के वालदेन से दुख जो इजहार जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू दियण की हिदायत स्कूल के मलबे में समूरन बारन के कढ़ी वरतो है घिटियों सोड़ियों होजन सबब इमदादी कार्रवाई में दुखियाई पेश थी केपीए के सलाहकार समर हारून बिलोर है जिंदगी जो को भी मुतबादिल ना है फोतन के वारसन की मदद कई वेंदी सीसीपीओ पेशावर है साने के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल किया वेंदो पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज एमरजेंसी की मंजूरी दई छी स्पीकर अयाज सादिक की सदारत हेठ पार्लियामेंट जो गडियल इजलास वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी केपीए में एमरजेंसी ए गवर्नर राज वारो हुकुम पार्लियामेंट में पेश कयो रिथ की हिमायत में 214 मुखालफत में 56 वोट पिया अपोजिशन सख्त इतजाज कयो कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तारण चयो त वफाकी हुकूमत समूरा कदम आईन ए कानून मूजिब खणी रही है
4: आप सुन रहे थे जी ए एफ एम नेटवर्क पर KTN News
5: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
9: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद

0: Beauty Cream, a product of Aksa Cosmetics.
1: Helpline number, Hyderabad Region 0370-256-8321 or Helpline number, Sakhai Region 0314-775-4462.
2: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
3: Sariya, Garder, Tier, Angle, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya Dastyab Ain.
2: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
3: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ain 0242-460100.
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असां वट जगह जो जारियूं जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0302-01800-003
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: हॉस्पिटल लाड़काणो, जिते रोजानो हॾन ऐं जोड़नि जे मरीज़नि जो फी सबील लाह इलाज।
1: दिल दीवानी
2: रुलाए छॾी राजन खे।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट।
2: कहते हैं आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ऐसे के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब के यहाँ पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उन्हीं सेम नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं जो आप लोगों को टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं। तो नंबर सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बात है कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनको अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है जनाब। उसके अलावा व्हाइट एज ब्यूटी सोप है, व्हाइट एज का फेस वॉश है, और साथ साथ व्हाइट एज की डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है। जी बिल्कुल, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब। उसके अलावा व्हाइट एज लवली क्रीम है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तमाम प्रोडक्ट जो है ना अपना अपना काम करते हैं। मतलब ऐसे कि अगर आपको चाहिए कोई ऐसी नाइट क्रीम जो कि भाई आप लोगों को रिफ्रेश बना दे, आपकी स्किन को अच्छा सा लुक दे दे, आपके चेहरे पर जो है ना व्हाइटनिंग ला दे, तो आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और मिल्क से तैयार की गई है। अगर आपको चाहिए कोई लाइट सा प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करें अपनी हर स्किन टोन के ऊपर, तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सोप इस्तेमाल करने वाली समाते हैं, साबुन लगाना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। क्योंकि व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना, ये भाई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी परचेज करना चाहिए। वैसे ये आप लोगों के लिए एक ऐसा सोप हो सकता है जैसे आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। मोस्टली जैसे आप घर में कोई भी साबुन का यूज करते हैं तो सारे लोग ये व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना लगा सकते हैं। ये बहुत ही मिल्की सा सोप, इतना कमाल का आपकी स्किन को बना देगा, इतना सॉफ्ट सा ग्लोइंग सा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना, उसकी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार रखा गया है। वैसे तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्रीमी सा लुक चाहिए और मिल्की सा लुक चाहिए तो आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम और व्हाइट एज का जो है ना वो साबुन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों के चेहरे पर विटामिन सी की कमी है या फिर आपके चेहरे पर आपको चाहिए कि भाई, या ऐसा होता है ना कुछ लोगों को ऐसा क्रेज भी होता है कि हम विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो आपके लिए व्हाइट एज का विटामिन सी फेस वॉश मौजूद है। और व्हाइट एज का जो विटामिन सी फेस वॉश है ना, या कि स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और साथ साथ ये बड़ा क्रीमी सा फेस वॉश है, तो इसका इस्तेमाल भी आप सब लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं जाना, यानी कि ऐसा होता है कुछ लोगों की घूमने फिरने की बड़ी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, तो अगर आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक है तो आप व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना, ये आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा जो है इसको आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। बाकी अगर यहाँ पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब की बात आती है, तो जिन लोगों के चेहरे पर बड़े एक्ने होते हैं ना, एक्ने को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है आपने बड़ी सी ट्रीटमेंट करवा रखी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट से ऐसा होता है, मुझे लगता है कि फायदा जो है ना आपको थोड़ा सा वक्ती तौर पर मिल ही जाता है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। इतने प्रोडक्ट जो है ना, बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स की जब चक्कर लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए और कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी एक्ने की ट्रीटमेंट कर सके, एक्ने से फाइट कर सके, तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है। अच्छा हाँ, ये जो है ना, आप लोगों को नाम जरा याद करना है इसका, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट एज का ये जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है ना, इसका नाम आपको आना चाहिए। एक तो ये है कि भाई ये व्हाइट एज का आप एक्ने ट्यूब कह सकते हैं, दूसरा ये कि आपको ये नाम होना चाहिए, क्योंकि ये आसान है मुझे लगता है नाम के, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब। ये डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल दुकानदार दे देंगे। और ये जनाब बहुत ही कमाल का ट्यूब है, ये बिल्कुल ये ट्यूब है, अगर आप कोई अच्छा सा एक्ने ट्यूब लेना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब, तो आपके चेहरे पर जितने भी एक्ने हैं या फिर जो बैक्टीरिया आपके फेस पर जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से एक्ने बनते हैं, उनसे आपके चेहरे पर छुटकारा हो जाएगा। आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो खत्म हो जाएगा। एक्ने मार्क्स हैं या फिर ब्लैक पॉट्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और बेदाग हो जाती है, और आपके चेहरे पर जो है सारे एक्नी का खात्मा हो जाता है। उनका अलावा जेको असावट व्हाइट एसी लवली क्रीम भी मौजूद है। मतां के आराम आराम से सबनी प्रोडक्ट्स के बारे बुधाई ना, पर खोर सारा डी थी ना, तवा का थोड़ो विसरी वयो हुंदो। इन लाइ मतां के सबनी प्रोडक्ट जो डिस्क्लेमर डी दी चाती त केड़ा केड़ा प्रोडक्ट है उनन के तवा किया किया लगाए सको था। बाकी हां डिटेल्स तवा सा बिल्कुल शेयर करना सी। अगर तवा इस्तेमाल कंदा व्हाइट एस जा प्रोडक्ट त तवा के खबर हो जे जेको भी प्रोडक्ट ता लगाए था उन जो रिजल्ट छा मिलंदो तवा के, वो तवा छो लगायो पर। सो अगर व्हाइट एस जी लवली क्रीम जी असा गाल कयूं था त व्हाइट एस जो को लवली फार्मूलो आ ना, ही डाडो जबरदस्त सिंह कमाल जो फार्मूला है बाबा। ही लवली क्रीम आहे जेका तमहा मतलब नीह जो भी लगाए सगो था, आई के फंक्शन में वनो था, पार्टी आहे या फिर जेकी कॉलेज वेंदी छोकरी हुंदी आहे, या तमा जी का जॉब आहे, तमा स्कूल वनो था, या कोई भी तमा जो कम आहे, तमा जे पर्स में बस व्हाइट एस लवली क्रीम हुजे, यानी के सफा मेकअप वारो फार्मूलो अची वेंदो तमा जे चेहरे ते, आई तमा के खबर पंदी त एतरो जबरदस्त हिकड़ी लवली क्रीम तमा के निखार दे वई, त तमा उनके इस्तेमाल करे पांजे खूबसूरती में इजाफो आने सको था। व्हाइट एस जी का लवली क्रीम है ना बाबा, रेडिएंट अल्ट्रा वाइटामिन जो फार्मूलो आहे, जिनके अंदर 30 वाइटामिन एड कया वया है, इन ला एड कया वया त तमा जी स्किन ते जेके वाइटामिन सी कमी होंदी है ना, ओहा पूरी थींदी रहे। वाइटामिन की कमी जब पूरी होती रहेगी तो आपके चेहरे पर निखार और खूबसूरती तो खुद ब खुद आता जाएगा। तो व्हाइट एस की लवली क्रीम ये एक फेयरनेस फार्मूला है। जो लोग फेयरनेस क्रीम में लगाना पसंद करते हैं या जिनके चेहरे पर ऐसा होता है कि आप मेकअप नहीं लगा पाते, मेकअप से ऐसा होता है ना कि भाई आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है, खास करके सेंसिटिव स्किन वालों, तो मेकअप अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं करता तो बस सिर्फ आप जो है व्हाइट एश लवली क्रीम लगा लीजिए, आप मिनटों में रेडी हो जाएंगे, चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एश लवली क्रीम से मिलने वाला है। तो व्हाइट एश की लवली क्रीम तो बिल्कुल आप लगाएंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियां आ रही हैं तो व्हाइट एश का जो है ना वो आपके लिए लोशन भी मौजूद है, और लोशन जो है ये भाई ट्रिपल वाइटामिन का फार्मूला है और ये बड़ा आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा। तो जिन लोगों को लोशन चाहिए होता है, खास करके हमारे चाचे को, तो चाचे को जो हमारा लोशन चाहिए तो वो आप जो है व्हाइट एज का लोशन ले सकते हैं जो कि ट्रिपल वाइटामिन से बना हुआ है, और इसके अलावा आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा, और साथ साथ जो है ना हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि व्हाइट एज के अंदर मौजूद है। 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, एक लेमन का वेरिएंट है, दूसरा जो है वो जनाब रोज का वेरिएंट है, और तीसरा खीरे का वेरिएंट है। ये तमाम चीजें हैं व्हाइट एज के, मतलब मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है ताकि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो, बस आप जाएं और अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट परचेज करें और खूबसूरती का जो है ना दरवाजा आपको मिल जाए कि अब हमने खूबसूरत होना है, बस ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट है और अब हम इसे लगाएंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से व्हाइट एज के ये तमाम प्रोडक्ट्स लगाइए, आप पिक कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट आइए और कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के हिसाब से है, जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइट एज सोप हो, व्हाइट एज का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो, या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम हो, या फिर लोशन ही क्यों ना हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाएंगे, आपको हसीन प्यारा खूबसूरत बना देंगे। ये जनाब लगाने के लिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मंगाने के लिए आपको जो नंबर्स बताए जाते हैं उनके ऊपर भी रापता रखा करें और कॉल या फिर मैसेज करके उनको बता दें कि आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज की तमाम रेंज को, और डायल कीजिए 0332738 4309। बुड़ी 300 है 73 84 309। नंबर है 03 12 50 25 907। बुड़ी 312 50 25 970।

यारो भलो गानो हलायो आ हुमेरा चना जी आवाज में सेहरो आहे वैसे ही सेहरो असा के हिदायत अल्लाह फरमाइश कई ला केंजी शादी तो कराई तहां जी नथी थे ना मतां थी भी सके तो थींदी जे तो तहां असन जा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया है चाहे वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो जा या और ये वाइटी जो प्रोडक्ट्स हो जा बाबा जरीदा इस्तेमाल करना ताके खबर पानी तो वाकई खूबसूरती काथे लिखेल हो अच्छा ये पैनल जी तरफ अचूं था तो तमा जा कोड सारा मैसेजेस जमा थी वया है सो पढ़ी बैठना सी

हमारे साथ यहाँ पर महबूब अली मोरो सिटी से कहते अस्सलाम वालेकुम सदरा मुस्कान कुंज माशाल्लाह आपका प्रोग्राम और क्या बात है स्टार्टिंग जीती रहो सदा दिल खुश हो जाता है आपको सुनकर सो नाइस ऑफ यू थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना भात आसा की मोरो में ज्वाइन कर है और मोरो से अजहर अली भट्टी भाई है और आप हमें सुन रहे हैं जी सॉन्ग शाहिद अली बबर का सुनना चाहते मैं कोशिश क्या थी तुम्हारा गानों हलाई अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थिबू का हबीबुल्ला थिबू के आरजे सदरा मुस्कान शो तवां जो मेरी मेरी नाइस आए सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम तवां के सजाद रुस्तमानी भाई हमें मातली से सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको वेलकम एंड खुशामदीद अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ब्यूटीफुल है मैं और मेरी पूरी जो फैमिली है ना वो यूज करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है सॉन्ग आपकी पसंद का एंड सिंगर हमारी पसंद सिंगर फैजाली डेडिकेट आपको और डेडिकेट किया है नोरीन कराची वाली को डेडिकेट चाचा को डेडिकेट वाह सही वाह सही गोले गोले डेडिकेट क्यों था अब्दुल्ला भाई आपको वेलकम कहते ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और बाकी जो लोग व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए शहजाद अली राजपर फ्रॉम बसीरो वालेकुम अस्सलाम अदी सदरा की आई हो अल्लाह आपको खुश रखे प्रोग्राम इज वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना भात आज मोहब्बत हुआ है और मोरो से महबूब अली भाई तमाम भी चाहिए बाबा मोरो जी अज रेडियो ते प्रोग्राम थोड़ो सही न पो हले इन लाइ मूं मैसेज करे छॾियो आहे अल्लाह कंदो सही थी वेंदो चाचा कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल चाचा तव्हांजो गानो हलाए वठूं था मकसद मना हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से कहते हेलो हेलो जी मैं भी तो आपका शो सुन रहा हूँ और जी बड़ी बड़े लोग आदाब से सारे ये आपने शायद शायरी लिखी लेकिन शायरी की टांगे वांगे तोड़ दी आपने तो इसको हम पढ़ना जो है ना वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं बाकी चौथा सदरा मुस्कान जी सिंधी सिंधी मुझे भली आए छोटो का जो कंधा आए मुझे सिंधी थे और हमारे साथ जीपाल भाई के थे टॉपिक भाव जी बचपन में एक गलती हुई थी तो मेरे पप्पा जी ने हुक्का पानी बंद कर दिया था मैंने पूछा कितने दिन मंथ के लिए हमारे मॉम ने साथ दिया एक मंथ खर्चा बंद किया वक्त था वो भी क्या बात है जी मेरे को लगा खाना पीना बंद कर दिया लेकिन खर्ची बंद सही सही खर्ची टेंशन ना है बाबा खाना पीना बंद हो जाए तो वो जरा मुश्किल वाली बात हो जाएगी और आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए ठीक है जयपाल भाई और मुझे बताएं खुशी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और फजली हमारे साथ कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम हैप्पी हैप्पी आफ्टरनून और माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सदरा मुस्कान जी कैसी हो मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स टॉपिक डियर स्वीटी मुझे ऐसी कोई सजा नहीं मिली थी बचपन में मैं सबकी लाडली रही हूँ जाना ओके आप रहिए बाकी तो सब नहीं रहे होंगे ना वही

हा भाई मुखे न ही दरअसल असांजे किशोर भाई के भाभी मिली हुई जंहिंजी तबियत जेका आहे उहा फकीराणी आहे असांजी भाभी वाकई ॾाढी भली आहे भली इन लाइ आहे छो त हूअ वाइटी जा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदी आहे न वैसे तबियत में भाभी ॾाढी भली आहे अलाह साईं ख़ुशि रखे तव्हां मुंहिंजी जोड़ी ऐं सलामत हुजे ऐं तव्हां ईअं ई असांजा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा रहो हुन खां अलावा जिन माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो बाबा छो कंजूसियूं कंदा आहियो असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जवेरिया असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई लाड़काणे खां जवेरिया तव्हांखे चवंदा भली करे आया और हमारी प्यारी दिल रुबा बि हमारे साथ मौजूद आहे और मौजूद आहे जी ये वालेकुम असलाम सिदराबाजी में मंसूर अली अकरो शरीफ से टॉपिक आंसर में स्कूल में नहीं जाता था तो सजा मिलती थी सलाम अनोमान और जुनेद हिंगोरजा राशिद शाह को और अहमद मुगल का गाना सुना दीजिएगा शो शो आपका बड़ा वीआईपी हो रहा है ओके जी बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं

वाह साईं वाह गानो बुधो था सबनी के गानो वणे पयो और निसार मोलाई भा तमा के बेसन प्रोग्राम वणे पयो पर तामो के हाल अहवाल दियो तमा वाईटी सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कोन आई हां तमा सबनी जला अलग-अलग प्रोडक्ट्स मु ठाराया है यानी के ताके फेस वॉश अठनो आ ता वाईटी जो फेस वॉश लगाए सगो था साबुन हणदा है ता वाईटी जो साबुन लगाए सगो था वाईटी सी ब्यूटी क्रीम भी है जनाब नाइट क्रीम अगर तमा इस्तेमाल करना चाहता कोई सठो फार्मूलो हल्को फार्मूलो जे अंदर खीर हो जे एवोकाडो हो जे एलोवेरा हो जे तो तमा जिला है वाई देखो ना वाईटी सी ब्यूटी क्रीम मौजूद है वरी केंके एकनी प्रॉब्लम आहे दाना नथा छडें त तमा जिला डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब ठारायो थी मा वरी केंके कोई फेयरनेस क्रीम लगाणी आहे जेका ता डीया जो लगाए मेकअप जी जरूरत तमा के न पर त तमा जिला वाइट एसी लवली क्रीम ठाराई थी मा ये सब प्रोडक्ट्स ता वनो पाजे करीबी जनरल स्टोर सा वनी वठी अचो ए सब प्रोडक्ट ता के मुनासिब पैसन में मिलंदा ई मुनासिब पैसन सा गडो गड तमा जी स्किन जिला डाडा फायदेमंद आहे छो त ही सब जेके प्रोडक्ट्स आहे नेचुरल अजा से तैयार थेल आहे विटामिंस जो भरपूर फार्मूलो आहे सो लगाईंदा रहो ता मर्द मायो सबनी चले आहन बाबा खूबसूरती हासिल करने सबनी जो हक आहे सो बोलो बाबा साडा हक एते रख

हाली रेसे लगाई भाम ही गानो हले पे शमन जो एंजॉय करी बैठो मुगल उमरानी भा से सगत मौजूद आए थैंक यू हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा वेलकम कहते तमाम को और नजर मोहम्मद भट्टी भाई हैं हेलो जी मैं ठीक हूं तामुदा की आए आतिफ असलम का गाना सुनना चाहते हैं मटियारी से आपने मुझे ज्वाइन किया है मैं आपको वेलकम कहती हूं आपका गाना लगा देंगे और नखा अलावा दर्दे दिल आ चुके कहते हेलो हटो हटो मुझे आने दो जरा वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी कैसी हो मैं बहुत प्यारी आप

जियो करे ओके गाना एंजॉय कयो गाने सां गॾु गॾु असां वञूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ नंढड़ा ब्रेक हूंदा मोटी नासी बाबा ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटी सो गाॾी न वञो हिते वेठा हुजो ॿुधंदा रहो प्रोग्राम वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
2: सुपर वाइट हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाए 03201800003।
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद, आईबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो ॾींदो। यादि रखंदा मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
7: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
8: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
9: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
7: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। तेलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
10: अस्सलाम वालेकुम अदा।
11: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
10: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
11: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
10: न अदा।
12: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे।
10: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
11: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
10: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
12: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
11: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
13: 0301-399-2836।
14: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

बिल्कुल जी, कंबर में भी असांजा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि। कंबर में भी तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स किथां बि वञी वठी सघो था। कंबर में भी तव्हांखे आराम सां मिली वेंदा। सो अगरि तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु करणु चाहियो था, जेका तव्हांजी हर स्किन जे लाइ आहे, यानी कि तव्हांजी स्किन अगरि सेंसिटिव आहे त उन ते बि लॻाए सघो था। छो त हुनजो फार्मूलो जेको आहे न उहो तमामु ज़बरदस्त आहे। नेचुरल अज़ाइन जे अंदरि एड कया विया आहिनि, जीअं हिन जे अंदरि तव्हांखे एवोकाडो मिले थो, खीरु आहे जनाब, एलोवेरा आहे, ऐं उन खां अलावा उहे तमामु चीज़ूं जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ बहितर आहिनि, तव्हांजी स्किन खे खूबसूरत बणाए सघनि थियूं। ऐं हिन जे अंदरि यानी कि वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि SPF 60 बि मौजूदु आहे। यानी कि तव्हां ॾिठो हूंदो नॉर्मली त क्रीमनि जे अंदरि SPF 25 हूंदो आहे या 20 हूंदो आहे या ज्यादा ज्यादा जेको आहे 40 हूंदो आहे, लेकिन असां हिते ॾिसूं था त वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि SPF 60 आहे। अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा वाइट एज ब्यूटी क्रीम त तव्हांखे जनाब खूबसूरती सां गॾो गॾु तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि थींदी रहंदी। छो त तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न इहे खोड़ सारा अहिड़ा असरात पइजी वेंदा आहिनि सिज जा, जंहिंजी वजह सां तव्हांजी स्किन हिकु त मुरझाइजी वेंदी आहे, ॿियो त तव्हांजी स्किन जी जेका रंगत आहे उहा काफ़ी डल थी वेंदी आहे। अगरि तव्हां मर्द हज़रात आहियो, ख़वातीन आहियो, तव्हां सभिनी खे खपे त वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो फार्मूलो जेको आहे ट्राए करे ॾिसो। ऐं वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां अकेली इस्तेमालु करणु चाहियो था त बिल्कुलु करे सघो था, पर वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो अगरि तव्हां फार्मूलो ठाहिणु चाहियो था जंहिंजे अंदरि वाइट एज लवली क्रीम विझी सघो था, वाइट एज ही जेको डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे इहो विझी सघो था, इहे सभु चीज़ूं एड करे तव्हां जॾहिं इहो फार्मूलो ठाहे पंहिंजे चहिरे ते लॻाईंदा न त तव्हांखे ॾाढा भला रिज़ल्ट मिलंदा। जेके तव्हां ॿाहिरां इलाही किना किना फार्मूला वठी ईंदा आहियो न दुकाननि तां, जेके अॼुकल्ह माण्हू ठाहे तव्हांखे चवंदा त बाबा वेठो हणी ॾिसंदो त भलो रिज़ल्ट मिलंदो, बाबा उन्हनि खां थोरो बचो, अलाई केॾा केॾा उन्हनि में अलाए कहिड़ा कहिड़ा प्रोडक्ट विझंदा आहिनि। सो तव्हां घर वेठे पंहिंजे लाइ सेफ फार्मूलो ठाहियो, वाइट एज ब्यूटी क्रीम हुजे, वाइट एज लवली क्रीम हुजे, ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब हुजे, इहे टई चीज़ूं मिक्स करे जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त केतिरो ज़बरदस्त रिज़ल्ट जेको तव्हांखे मिले पियो, ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाकई केतिरे सुठे तरीक़े सां तव्हांजे चहिरे ते असर बि कनि पिया।

गानों की गाने जी कट थे अबुदाय सुमाटू ने गाने जी फिर मार्श किया है। बिल्कुल गानों मजेदार है पर गाना बुधा सिंह गनुगर तमाम व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना था मजो अच्छी वे अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जी तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर्स अना तीन अवेलेबल को थे तो उन्हें तुम्हें नंबर बुधाई आया जिन तुम राबतों करीबी जनरल स्टोर्स से अवेलेबल भी कराए सको था। सो जनाब नंबर जो है वो नोट करी वो अगर अना तीन तुम कौन करो है सो नंबर है 0032 5090 7 जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था। व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो जो भी प्रोडक्ट तुम लगे तो ही प्रोडक्ट असाजे हिसाब वो है तुम उनके परचेज कर इस्तेमाल कर ठीक है तुम्हें सफा भला रिजल्ट मिलता रहा सोना सोना थींदा रहंदा।

जयपाल भाई हमारे साथ हैं। जयपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही आप व्हाइटिश की लवली क्रीम लगाते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इजाफा ला देगा। कहते हैं अल्लाह मालिक है बाकी ठीक है ठीक है। और ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी सिद्रा, आप कैसी हो? माय नेम इज तहमीना आपी। एक राज की बात बताओ, अच्छा कहती है कि जब आप सिंधी बोलते हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आप सिंधी बोल रही हैं। आप बहुत ही कमाल कमाल की आ रही हैं। और टॉपिक का जवाब है कि जब बचपन में अम्मी कुछ कहती थी तो समझ ही नहीं आती थी, तो अम्मी चांटा मारती थी। ओके उन्हें जो पोए असर लगे तो हले तो आई तवा तमीना ब मैसेज कया नहीं सेम तवा जब मैसेज अच्छी वया ना सांडे पैनल पे। सो थैंक यू सो मच सोनी तासा सगर मौजूद है तांजो मोहब्बत वन बाबा ये कदे कदे पांजे हो जन जो सबूत दई छड़ींदा कयो। और हमारे साथ है झुलरी खान खालिक लाशारी शो वीआईपी आए, थैंक यू वेरी मच खालिक भा। अच्छा मैं कोशिश क्या थी लास्ट में का जयपाल भाई पोइट्री तांके बुधाए वठंदम, दिसा टाइम बची हो तो इते इलाही सारा कमेंट जमा थी वना ली मथे भजंदा था वन ओ ये भजंदा था वन। अच्छा हमारे साथ है गुल यासी नाज भाई, आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हाँ लोशन में लगाऊंगा, बिल्कुल आप लोशन जाइएगा परचेज कीजिएगा, व्हाइटिश का आपको लोशन मिल रहा है, बहुत ही कमाल का लोशन है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि या तारिक भाई को बोल दें, भाई तारिक भाई को बोल दें, तारिक भाई आपको पहुंचा दे के घर बैठे। और गदा हुसैन कहते हैं के वन्य अच्छा कहते हैं आज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, मुझे शादी थी रही आहे, कल आपने दुआ की काम दिखा दिया। भाई आपकी दुआ दिसो मुझे दुआ के लिए फास्ट सर्विस वाकई मुझे दुआ असर कंदी था दिसो ता कल मुखे चयो ता दी मुझे शादी न पई थी जरे में डेट फिक्स थे थी तो कुछ ना कुछ फैमिली में थी वेंदो आए आई तमा जी दिसो हाने शादी थी ने इंशाल्लाह खैर सा तमा जी शादी थी वेंदी ता ओतने डीएन में ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो ठीक है। आई वरी तमा जडे व्हाइट एज जो ही फार्मूला ट्राई करे दिसना ने ता ता के इन मा भी भलो रिजल्ट मिली वेंदो, सो ता लगाईंदा रहो शादी तई सफाई पप्पू थी वेंदो। जी वैसे हिदादला सही बात है, शादी वाले गाने सुनकर मजा ही आ जाता है। मोहम्मद जमान भाई जियो करे इससे। दर्दे दिल कहती है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। वाह साई वाह वाह साई वाह। अच्छा एसन अली भुक्टी हमें लारकाना से सुन रही है, एसन भाई आपको वेलकम हो गया। फराज डहरी सुन रही है, कहते हैं मजहर और मजहर की तरफ से सलाम, सो वालेकुम असलाम दोनों भाइयों को वेलकम।

अच्छा अख्तियार अली गबर भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान गबर, जुल्फकार अली गबर, अली दोस्त गबर, प्रोग्राम बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच प्यारा भात, हम पाने गोठन में भी वाइटेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था।

अच्छा नज़र मोहम्मद भट्टी भा तव्हांखे प्रोग्राम वणी पियो, गाना वणनि पिया, सो बाबा बिल्कुल ई असांजो सुहिणो प्रोग्राम आहे जंहिंखे तव्हां ॿुधंदा आहियो ऐं जंहिंमें तव्हांखे ख़ूबसूरती जा राज़ बि ॿुधाया वेंदा आहिनि। किशोर भाई कहते हैं कि मूं ते कावर करण खां बहितर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो। ओ इहा ॻाल्हि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो बाबा जी सुहिणा थी वञो। और गदा भाई कहते हैं सदरा देख लो आज मैंने आपको तकरीबन 10 मैसेज किए लेकिन आपने मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़े, सारे पढ़े लेकिन ये अलग बात है कि आपने सुने नहीं होंगे अपने मैसेज। तो प्रोग्राम जब मैं कर लू ना तो फेसबुक पर हमारी ये पोस्ट जो है ना उस पर सारी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, तो आप वो सुन लीजिएगा ठीक है। गदे दिल कहती है कि मैं बहुत मासूम थी तो मुझे कोई सजा नहीं मिली। यानी कि आप ऐसे कोई काम करती नहीं थी कि आपको सजा मिली ऐसा है ना। अरे चाचा तव्हां जेको गानो चयो न उहो अहिड़ो गानो आहे जेको 5 बजे वारे प्रोग्राम ॿुधंदासीं, ठीकु आहे? चोरी चोरी चुपके चुपके समझी वञो पाण।

हज़ार भाई ने साढ़ा हक ऐसे रखमा भी तयो जवान थी वनो ए पांजे पांजे हिस्से जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करे छो तवा केड़ो भी प्रोडक्ट वठी इना वो तवा जे खूबसूरती में चार चंड लगाए छरिंदो वैसे तवा रेगुलर कोई कम कयो था को जॉब कयो था पढ़ो था पढ़ायो था तो तवा जे लाए वाइटिश लवली क्रीम सफा बेस्ट रहंदी बाबा वाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम आए जेका तवा बस ये चेहरे ते लगाए छरिंदा ता चुटकिन में रेडी थी वेंदा आई वाइटिश लवली क्रीम जेका ये तवा जे चेहरे ते जेको ना ये भी थिनो ता पघर भी लवली क्रीम अगर ता लगाइंदा हो तो चेहरे ते पघर निकरी इंदो आहे या वरी ये निशाने निशाने ठही वेना है तो जदी ता वाइट एसी लवली क्रीम लगाइना ता एडो को भी सीन न थिनो आई तवा जी स्किन सफा स्मूथ हुंदी आई उपतो तवा जी चेहरे ते जको नगड़ी शाइनिंग अच्छी वेने जदी ता वाइट एसी लवली क्रीम लगाए करे बाहर निकरंदा ता मानु ता का पुछंदा आए हाय चमको प्या।

तव्हां ॿुधायो बाबा इहो कहिड़ो प्यार आहे तव्हां वाइट एस जो प्रोडक्ट कोन वठो इहे मोहबतूं न आहिनि बाबा मोहबतूं दोनों तरफ़ से निभाई जाती है समझो था न ऐं रिहान खान खोसो भाई में सुन रही है वालेकुम असलाम प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया मुमताज़ मलय जो गानो बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायोसीं और हमारे साथी रमज़ान भाई रमज़ान भाउ तव्हांजो गानो जेको पंज बजे वारे प्रोग्राम ॿुधूं था ठीकु आहे मरियल गाना पंज बजे वारे प्रोग्राम में फरमाइश कंदा कयो और फराज डहरी कहते हैं क्या कमाल की क्रीम है हाँ ना वही तो बताते हो बस अलग आला तव्हां लॻाईंदा न आहियो लॻाए ॾिसो सुहिणा थी वेंदा अच्छा फहीम शेख भी आ चुके हैं फहीम भाई कहते हैं कि खुद में खामियां है और दूसरों से जलते हैं चेहरे धो नहीं सकते आईने बदलते हैं वाह वाह वाह वाह वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम यारे भा के चौंधा भली करी आया अरे सुमाटू कहते हैं कि सदरा चाचू लाइ भी दुआ अगरि चाचू जी शादी त थी वई आहे नी तव्हांजे लाइ क्या पर तव्हां वाइट एस जो प्रोडक्ट लॻाए तव्हांजी बि शादी थी वेंदी हज़ार भाई कहते हैं कि आपका शो रिकॉर्ड होता है एफ बी पे सिस्टर फिर भी आप इतना बस ये भाई आप लोगों की मोहब्बतें होती है कि आप ऐसा समझ जाते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका प्यार है अच्छा जयपाल भाई लिखते हैं कि सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम सोच समझ के रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम जब चलते हैं तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता पोइट्री मैंने सुना दी अब आपकी बारी इरशाद इरशाद क्या जाए एकड़ो मिनट वेड़ो पानी सीट थे

बातें ऐसी होती है ना जो हम वक्त गुजरते साथ ही समझते हैं, क्योंकि जैसे वक्त गुजरता है तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों की असलियत हमारे सामने आती जाते हैं, और वैसे ही हम समझते हैं कि भाई हमने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। तो किसी को अपने जज्बात हो, ऐसा साथ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो या फिर कदर हो, बल्कि कुछ भी देने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि आपकी दी हुई चीज उसके नजदीक कितनी कदर रखती है, क्योंकि हर कीमती चीज हर शख्स के लिए कीमती नहीं होती, और कभी कभी हम अपनी कीमती चीजें ऐसे लोगों पर भी लुटा देते हैं जो उनकी कदर करना जानते ही नहीं। तो जब भी आप ये तमाम चीजें किसी पर निशावर करने की कोशिश करें तो ये जरूर देख लें कि वो इंसान इन चीजों के काबिल भी है या नहीं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे लोगों पर लुटा चुके हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो कोशिश किया करें अपनी जिंदगी में अपना ख्याल रखें, और अपने ख्याल के साथ साथ अपने चेहरे का भी ख्याल रखें, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। बहुत सारी हमारे पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि आप लगा कर ना सिर्फ खूबसूरती को हासिल कर सकते हैं बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन भी बन जाएंगे।

ओके जी हेॾे होॾे अलाए छा छा आई तव्हां. अच्छा हाँ फहीम भाई गाना एंजॉय कीजिए और यहीं पर बस आप लोगों से लेते इजाजत. वरी तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी 5 बजे वारे प्रोग्राम में थिए पई. सो फहीम भाई कहते हैं आपका अचानक ट्यून क्यों चेंज हो जाता है अदा खुश रहा करी. ओके तव्हांजो हुकुम ॿियो ॿुधायो. और बस मोकिलाणी आहे एसन कहते मां बि वेठो हा पर खामोश कोई ॻाल्हि नथो कोई ॻाल्हाए नथो मूंसां. तव्हां मूंसां ॻाल्हायो नी कंहिं ॿिए खे छॾे ॾियो बाबा. चलो 5 बजे वारे प्रोग्राम में मिलूं था. पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा. किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत. कंहिंजो को मैसेज रहिजी वियो आहे को गानो शानो रहिजी वियो त बाबा माज़रत कयूं था. मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाबा लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: चांदरन जी खूबियूं, जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घटकन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514456 आई तौकीर अहमद 03616237093
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुजे दुकान जी बे डरंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 0370-256-8321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 0314-775-4462 अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: ठीक है और अभी मजीद हमें खतरा है अल्लाह ताला खैर करे लेकिन हालातों का अच्छे ज्यादा है कोशिश कर रहे हैं थोड़ी आपके सामने तंग दिली है रेस्क्यू में मुश्किल आ रही तो कोशिश बढ़ती
5: के पी ए जे शहर पिशावर में टे मार निजी स्कूल की छित किरी पई चौटी शागिर्दन समेत छटी जणा दबजी फोत पंजा जख्मी पुलिस स्कूल के मालिक के हिरासत में वठी छो डीसी पिशावर है मलबे हेठा दबियल समूरन शागिर्दन उस्तादन के बाहर कढ़ी वो है वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी ए बियन पारा फोत थियल शागिर्दन के वालदेन से दुख जो इजहार जख्मी के बेहतरीन तिबी सहूलतू दियण की हिदायत स्कूल के मलबे में समूरन बारन के कढ़ी वरत है घिटियों सोड़ियों होजन सबब इमदादी कार्रवाई में दुखियाई पेश थी केपीए के सलाहकार समर हारून बिलोर है जिंदगी जो को भी मुतबादिल ना है फोतिन के वारसन की मदद कई वेंदी सीसीपीओ पिशावर है साने के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल कयो वेंदो
6: 214 members rose in favor of the motion.
5: पार्लियामेंट के गडियल इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज एमरजेंसी वाले रिथ से बहस जारी स्पीकर अयाज सादिक की सदारत हेठ पार्लियामेंट जो गडियल इजलास वफाक वजीर तारिक फजल चौधरी केपीए में एमरजेंसी गवर्नर राज वारो हुकुम पार्लियामेंट में पेश कयो रिथ से बहस की हिमायत में 214 मुखालफत में 56 वोट पया अपोजिशन जो सख्त एहतजाज कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ है वफाकी हुकूमत समूरा कदम आइन ए कानून मूजिब खी रही है पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर है पार्लियामेंटेनर केपीए में एमरजेंसी वाली रिथ मंजूर करण बदरा रद्द कन श्री रहमान सूबो वफाक से टकराव वाली पॉलिसी से नो ठा सकें पार्लियामेंट के इजलास दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात बिन्हीं अगुआन हथ मिलाने बाद मुख्तसर गाल बोल भी कई वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात केपीए की सूरत हाल समेत मुल्की सियासी सूरत हाल से गालियों

0: सिंध हुकूमत की चीन के शहर शिंगाई में सीड़पकारी कॉन्फ्रेंस जारी। वो वजीर सैयद मुराद शाह, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण बया शरीक। कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क 400 सीड़पकार भी मौजूद। मुराद अली शाह है कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया के सीड़पकार सिंध में सीड़पकारी ला मनसूबा पेश क्या वा। सिंध हुकूमत ए चीनी सीड़पकार विच में 16 मुआदन से सयू थी। सिंध हुकूमत सीड़पकार सहूलतू दी। रूसी घरू वजीर पाकिस्तान जो 4 दिन वो दौरो मुकमल करण बद रवानो। घरू वजीर मोहसिन नकवी हमनसब के एयरपोर्ट से अलविदा कयो। मोहसिन नकवी रूसी घरू वजीर जो दौरो पाक फौज पाक रूस लागापन के अगभराई थी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मार गया। ISPR मूजिब जिले वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस गुजे इतलाते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय प्राक्सी फितनों हिंदुस्तान जा 5 दहशतगर्द मार गया। सिक्योरिटी जरियन मूजिब मस्तोंग में कार्रवाई दौरान 2 दहशतगर्द मार गया, जडे त 104 अफगान शहरी गिरफ्तार। तुर्बत में इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई वही। 104 अफगान शहरी गिरफ्तार कया वा। अमेरिका ईरान खिलाफ मदर ऑफ वॉल पंप्स इस्तेमाल करने ते गौर शुरू कर छो। ईरान के इदारे CNN दावा CNN रिपोर्ट में
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर।

0: Flex Honda Limited जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: सुनी

0: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
3: सुपर वाइट हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अरे मैं खुश्क और बीरोनों की स्किन और इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिनमें आहिन चावर जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे, उन जी नमी के लॉक करे, ऐं चामरन जो खूबियो जिल्द मां फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
0: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखर रीजन 03147754462।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303-359-2120।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाए खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।

अगर कहीं भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराइण हुए उन रबो कह उन अलावा असा कई बारी के मेमोरी कार्ड में तब्दील कर दीदा।

0: और तीन मंजिला इमारत थी, इसके ऊपर तीन ही क्लासेस थी कि 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और दूसरे 20 में शहीद हो चुकी है और 47 से करीब जख्मी है। 25 जो है उनको शिफ्ट किया गया लेडी रेडी हॉस्पिटल। 110 मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी उसमें बची थे और अभी मजीद हमें खतरा है, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन हलाकतों का खदशा ज्यादा है तो शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी आपके सामने तंग गली है, रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश बढ़ती है।
1: केपीजे शहर पिशावर में टिमाड़ निजी स्कूल की छित किरी पई, 34 शागिर्द समेत 35 जणा दर्जी फोत, 20 जख्मी। पुलिस स्कूल के मालिक के हिरासत में वी छो। केपी हुकूमत साने की जांच लाए कमेटी जोड़े छी। वजी अजम शहबाज शेर भी वाक्य की रिपोर्ट तलब कर वरती। जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू दियण की हिदायत। CCPO पिशावर है तो वाक्यो संगीन लापरवाही जो नतीजो है। 16 घिटियन में गैर मयारी स्कूल कायम कर जिम्मेवार की निशानदेही कई वी।
2: ...214 members rose in favor of the motion. ...56 members rose against the motion.
1: पार्लियामेंट के गडियल इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज एमरजेंसी वारी रिथ ते बहस जारी। स्पीकर रियाज सादिक की सदारत हेठ पार्लियामेंट जो गडियल इजलास। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी केपी में एमरजेंसी गवर्नर आज वारो हुक्म पार्लियामेंट में पेश कयो। रिथ ते बहस की हिमायत में 214 मुखालफत में 56 वोट पया। अपोजिशन जो सख्त एहतजाज। कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तरड़ वफाकी हुकूमत समूरा कदम आईन ए कानून मूजिब खणी रही है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है पार्लियामेंटेरियंस केपी में एमरजेंसी वारी रिथ मंजूर करण बदरा रद्द कन। शेरी रहमान है सूबो वफाक से टकराव वारी पॉलिसी नथो ठाहे सके। दहशतगर्दी खिलाफ केपी हुकूमत के गड रखण की हर मुमकिन कोशिश कई। अस गालियन में उथी न वया हुआसी, बाहर पी ही इंतजार कर रहासी। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी है सूबे में एपेक्स कमेटी ठाण लाए मुश्किल के मुंह दियण पो। गालियन दौरान भी हुरन जूं समूरी गालियों मनी हुई। पार्लियामेंट के इजलास दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई से मुलाकात। बिन्हीं अगवाणन हथ मिलाने बाद मुख्तसर गाल्ह बोल भी कई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: Sial. Aye, ama sab budhi re aayo GFM 94 je live studio ma program Sehat Ji Gal. Jiye ta listeners, duniya ji sab khan wadi daulat nai sona hai nai wari chandi, par sehat tai tandurusti hi aaye. Insaan bimar the tho ta sab nematun berang thi windiyan aayin. Jadon tandurusti huje thi तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे. प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमूर साहबु, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि. ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था. असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851. सभ खां पहिरियां त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं. डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, कीअं आहियो? तबियत सां ठीकु आहे? डॉक्टर साहब, कीअं आहियो? त वैसे ठीकु आहे.
1: जी साईं, अलाह ताला जा करोड़ आहिनि.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: डॉक्टर साहब हर बार खमीस जुमे छंछर आचारी सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटली रोड मरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा है। असाने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असाने लाइव कॉल जो नंबर है 0301-96-8051 जी सर है जी सर चेकअप फीस होंगी है टे डी या सर हमारी कंपनी बर्दाश्त करती है या
1: जी सर बिल्कुल चेकअप फीस फ्री जो है सो असर हों जर्मन होम्योपैथिक की तरफा जो है सो पेशेंट्स के लिए खास एक रिलीफ हों जो अस मरीजन के पे हिसाब से दींदा अच्छा इन प्रोग्राम के तौर से असाजा पेशेंट्स जो हों उनके होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल जो तरीको जो उनके बार बार समझाइंदा बुधंदा बुधाइंदा भी आयो पर खास करके के पेशेंट्स ये हों के सही तरीके से दवा के इस्तेमाल न कंदा या उन्हें जो तरीक़ेकार जो खबर मरीजन के न हों जैसे करे भी पो या दवा उनके जो है सो उन मरीजन के यानी दवा असर न कंदी है जैसे इस्तेमाल तरीको सही न हों यानी एक गाल असा जी सही कॉल
0: सर कॉल पे से तवाजे मुझे कंटिन्यू करना से लेकिन इनका पहले एक कॉल आए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: केरे किथा खादा
2: सही नजम अली खास की गाले रोशा अल्लाह खा रोड का
0: छा पूछन चाहिदा डॉक्टर साहब का
2: सर असा जी मामी आए उने के जो आवाज मना चंदा मुतर करी वे के मल के पानी आवाज इलाज दादा कराए तो पर समझ न छी।
0: अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब मां के बताए थोड़ी डिटेल बता। जी सर
1: जी सही बिल्कुल या भी माखे खोड़ सारा मसाइल होंदा हैं कन जा मसाइल होंदा हैं दिमाग की कमजोरी होंदी है ब्लड प्रेशर होंदो है उनके करे भी जो थींदो है सो अना अदे के भी यही चवंदुसि त माखे रूबरू ॾेखारे वञनि त उहो वधीक बहितर रहंदो ॾिसी करे पोइ उन जी दवा जेको आहे सो थी वेंदी इनशाला ताला अहिड़े क़िस्म जा खोड़ सारा केसिस ईंदा आहिनि जेके अलहमदिल्ला उहे सही थी विया आहिनि। महिरबानी हलूं था पंहिंजे मौज़ू जी तरफ़ त मां ॻाल्हि पई कई त पेशंट्स घणा जेको आहे सो दवा खे यूटिलाइज़ जेको आहे सो सही न कंदा आहिनि यानी हिकिड़ो हिकु त जेको आहे सो फिर असांजी दवा खे फ्रिज में नाहे रखणो हूंदो ऐं उनखां पोइ हिन दवा खे जेको आहे सो जेतिरो मक़दार क्वांटिटी ॿुधाई वेंदी आहे यानी अधु कप पाणीअ में जेको आहे सो 10 फुड़ा त ओतिरा ई फुड़ा 10 फुड़ा ई विधा वेंदा आहिनि ऐं अधु कप पाणी में ई विधा वञनि घणा अधु गिलास में विझंदा आहिनि त ज़ाहिर त उहा दवा असरात एतिरो न कंदी आहे या सिर्फ़ु थोरे पाणीअ में जेकॾहिं ऐं घणा वरी ईअं हूंदा आहिनि जो अनलिमिटेड दवा विझी छॾींदा आहिनि जीअं ॿुधाईसीं 10 फुड़ा हुन विझी छॾिया 40 फुड़ा त उन सां उनखे जेकी हीअ मां ॻाल्हि कई त दवा जो को साइड इफ़ेक्ट न या को नुक़सानु न हूंदो आहे पर मिसयूज़ करण सां पोइ दवा जेको आहे सो ज़ाहिरी आहे त यानी ओवरडोज़ वारे तरीक़े सां जेकॾहिं केरु इस्तेमालु दवा कंदो त उनखे इस्तेमालु कंदो त उनखे ज़ाहिरी आहे जेको आहे नुक़सानु थींदो सो इन जे करे जेको तरीक़ो आहे डोज़ेज आहे उहो उन हिसाब सां जेको आहे सो यानी जेको ॿुधायो वञे ऐं पाणी हमेशह मां ॿुधाईंदो आहियां त जेको दवा जो रूल आहे त सजर पाणीअ में नलके जो पाणी हुजे ताज़ो या मोटर जो पाणी हुजे उन में बर्फ़ जे पाणीअ में दवा पवण सां बेअसर थी वेंदी आहे यानी उहो पंहिंजो असर न कंदी आहे जेकॾहिं के बल्कि मां वटि खोड़ सारा अहिड़ा पेशंट ईंदा आहिनि ऐं असां पुछंदा आहियूं मरीज़नि खां ईअं सम्झो त 30% पेशंट असां वटि अहिड़ा आहिनि जेके इहे ईअं दवा खे मिसयूज़ कनि था पोइ जंहिंजे करे मरीज़ खे फ़र्क़ु न पवंदो आहे ऐं घणा जेको आहे सो खोड़ सारा ॿिया बि जेको आहे सो तरीक़ेकार आहिनि मिसलनि हिकिड़ो खाधे पीते खां हमेशह असां मथां दवा चवंदा आहियूं घणा जेका सो नेराने दवा इस्तेमालु कंदा आहिनि या जेको आहे सो यकदमि जेको आहे सो वरी मथां स्मोकिंग कंदा आहिनि कॾहिं बि होम्योपैथिक दवा जेकॾहिं केरु इस्तेमालु करे थो त यकदमि उनखे सिगरेट नोशी नाहे करणी तक़रीबन 15-20 मिंटनि ताईं जेकॾहिं केरु सिगरेट पिए थो त वरी जल्दी पीउ जेको आहे सो हुनखे ऐं जल्दी दवा नाहे पीअणी या सिगरेट पीउ ऐं जल्दी दवा नाहे पीअणी या दवा पीउ जल्दी सिगरेट नाहे पीअणो त इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके मरीज़ खे असां उते रूबरू वेही करे सम्झाए पोइ दवा ॾींदा आहियूं उन जे बावजूद बि जेको आहे सो मरीज़ ग़लती करे ईंदा आहिनि इन जे करे हिन ऑनएयर प्रोग्राम ते अवां सभिनी ॿुधंदड़नि खे कंहिंखां बि दवा वठो था पर दवा जो तरीक़ेकार इस्तेमालु इहो ई हूंदो आहे तव्हां खे दवा इन तरीक़े सां इस्तेमालु करणु घुरिजे ऐं हमेशह दवा पी ऐं चङी तरह ढकिणो बंदि करणु खपे। ऐं ॿी ॻाल्हि त कहिड़ी बि चाहे मेडिकल जी टेबलेट हुजे या चाहे होम्योपैथिक जी टेबलेट हुजे उनखे कॾहिं बि हथ ते लाहे ऐं उहा तव्हां वात में न विझंदा कयो छो जो हथ में घणा जरासीम हूंदा आहिनि। उहा डायरेक्टली तव्हां पते मां या यानी डबी मां ज़बान ते रखी ऐं पाणी पी सघो था या ढकणे ते लाहे करे गोरी ऐं ज़बान ते रखी। त इहो हिकिड़ो यानी तव्हांखे असां सिस्टम्स तरीक़ो ॿुधायोसीं जंहिंसां तव्हांखे जेको आहे सो को नुक़सानु कोन थींदो ऐं वणंदो जेको आहे सो फ़ाइदो थी सघे थो। ऐं हमेशह दवा जॾहिं बि कंहिं बि मेडिकल स्टोर तां किथां बि वठो त उन एक्सपायरी ज़रूरु जेको आहे सो नोट कंदा कयो छो एक्सपायर मेडिसिन्स बि अव्हांखे नुक़सानु पहुचाए सघे थी। वॾी महिरबानी
0: सर। वक़्त जो अहसास आख़िर में सर कहिड़ो रिसर्च खे पैगाम ॾियणु चाहींदा
1: जंहिं असांजो वक़्त जो अहसास थिए थो लेकिन असांजी त दिलि चवे थी त अञा जेको आहे सो वेहिजे ऐं पेशंट सां ॻाल्हाए पर वक़्त जो अहसास वारे खे ख़बर हूंदी आहे।
0: बिल्कुलु
1: सो हिनजे करे उन्हनि दोस्तनि खे हिन प्रोग्राम जे तरफ़ सां मशवरो इहो ई ॾींदा आहियूं त जेको आहे सो यानी ॾिसो सफ़ाई ऐं निसफ़ ईमान आहे। हमेशह हैंडवॉश करे ज़रूरु जेको आहे जॾहिं बि तव्हां मानी खाओ या जॾहिं बि तव्हां पाखाने मथे अचो अचो चङी तरह ॿ दफ़ा हथ ज़रूरु वॉश कंदा करियो ऐं जॾहिं बि मानी खाओ त हथ साबुण सां धोई करे ऐं पोइ जेको आहे सो खाईंदा कयो ऐं नह ज़रूरु लाहींदा कयो। तकरीबन 15 ॾींहं 20 ॾींहं जेको आहे सो तव्हांजा नह ज़रूरु छो जो नहनि में जॾहिं मिटीअ जा ज़रात पइजी था वञनि त उन में हज़ारे जरासीम अची वेंदा आहिनि जेके अव्हां खाधो खाओ था उहे तव्हां सां गॾु मुंहं में उन बैक्टेरिया उहे मुंहं में जेको आहे वात में खाधे सां गॾु हलिया वञनि था त उहे अव्हांजे पेट जा जेके बि तव्हां ॾिसो अॼुकल्ह पेट जूं बीमारियूं आहिनि तकलीफ़ आहिनि इहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी इन नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ग़लतियुनि जे करे बि जेको आहे टाइम तमामु थोरो आहे। सो पछाड़ी में दुआ में ज़रूरु यादि रखिजो। वॾी महिरबानी।
0: असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो ऐं ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे। अल्लाह हाफिज़।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: एक्चुअली बस मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी उसमें बची थे और अभी मजीद हमें खतरा है अल्लाह ताला मौत का लेकिन हलाकतों का खदशा ज्यादा है तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी आपके सामने तंग दिली है रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश करिए।
5: केपीजे शहर पिशावर में निजी स्कूल जिसे तकरी पई चोटी है शागिर्दन समेत 25 जना दबजी फौत भी है जख्मी पुलिस स्कूल के मालिक है प्रिंसिपल के हिरासत में वी छो केपी हुकूमत साने की जांच लाए कमेटी जोड़े छी वजी अजम शहबाज से भी वाक्य की रिपोर्ट तलब कर वरती जख्मियों के बेहतरीन तिब्बी सहूलतूँ दियण की हिदायत CCPO पिशावर है वाक्य संगीन लापरवाही जो नतीजो है सोड़ियन घिटियन में गैर मयारी स्कूल कायम किया वो

0: केपी में गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी लॻाए वफ़ाक खे ख़तरे में विधो वियो आहे। इसाकदार मौलाना फज़लुर रहमान खे वॾे वज़ीर जी तब्दीलीअ लाइ न चओ हो। छा वॾो वज़ीर तब्दील करण सां दहशतगर्दी ख़तम थी वञे हा? पार्लियामेंट खे ख़िताब कंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त अलियन दौरान राणा सनावला, मोहसिन नकवी ऐं आज़म नज़ीर जो किरदार सारा जॻो हो। असां हर तरीक़े सां दहशतगर्दी जी मज़म्मत कई। गालियुनि वारे अमल खां अपोज़िशन पाण धार थी, परडे॒ही अंसर सबब गालियुनि जो अमल मुतासिर थियो। पार्लियामेंट में ख़िताब कंदे पीपी सेनेटर शेरी रहमान चयो त गालियुनि दौरान बैरिस्टर गोहर जो रवैयो मस्बत हो। अपोज़िशन जा घणा मुतालबा बि तस्लीम थी विया हुआ। अपोज़िशन पाण गालियुनि खां परे थी। पार्लियामेंट जे इजलास दौरान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ाना चकसी सां मुलाक़ात। ॿिन्ही अॻवाननि हथ मिलाइण बाद मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल बि कई। ज़रियुनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर खे इलेक्शन कमीशन में मुक़ररियुनि जे हवाले सां ॻाल्हियूं करण लाइ चयो आहे। सिंध हुकूमत जी चीन जे शहर शंघाई में सीड़पकारी कॉन्फ्रेंस जारी। वॾो वज़ीर महद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमण ऐं ॿिया शरीक। कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा 400 सीड़पकार बि मौजूद। महद अली शाह चयो आहे त कॉन्फ्रेंस में चीन समेत दुनिया जे सीड़पकारनि खे सिंध में सीड़पकारी लाइ मनसूबा पेश कया वेंदा। सिंध हुकूमत ऐं चीनी सीड़पकारनि विच में 16 मुआहिदनि ते बि सहियूं थियूं आहिनि। सिंध हुकूमत सीड़पकारनि खे सहूलियतूं ॾींदी। सऊदी इतिहाद पारां मदीने तरफ़ हुसियन जो फायर कयल मिज़ाइल नाकारा बणण जी दावा। यमनी हुसियन सऊदी इतिहाद जी दावा रद्द करे छॾी। सऊदी फ़ौजी इतिहाद मूजिब हुसियन पारां मदीने तरफ़ फायर कयल मिज़ाइल खे नाकारा बणायो वियो आहे। ओभर रीजन में हिकु ड्रोन खे बि हम तबाह कयो आहे। हुसियन सऊदी जे इल्ज़ाम खे कूड़ो करार ॾींदे रद्द करे छॾियो। तर्जुमान चयो आहे त रियाज में शाह ख़ालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते मिज़ाइल हमिलो कयो आहे। अमरीका ईरान ख़िलाफ़ मदर ऑफ आल बम्स इस्तेमाल करण ते ग़ौर शुरू करे छॾियो। ईरान जी तवानाई ऐं एटमी माॻनि खे निशानो बणायो वेंदो, अमरीकी ख़बरु इदारे CNN जी दावा। CNN पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त पेंटागोन तेहरान ख़िलाफ़ नई फ़ौजी कार्रवाई जो मनसूबो तयारु करे वरितो आहे। अमरीकी फ़ौज खे ईरान ते हमलनि लाइ ट्रंप जी हतमी मंज़ूरी जो इंतज़ारु आहे। ॿीहर जंग शुरू थी त पेंटागोन पहिरियों भेरो तेहरान ख़िलाफ़ मदर ऑफ आल बम्स जो इस्तेमालु कंदो। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारिजी विया। ESPR मूजिब ज़िले वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सिस गुजे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: This is GMA Rapur FM 94 Nurs Girls Degree College Halani Road Mirapur
1: Rabte Lai Hakim Ali Jiskani
2: 0301-399-2836
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

और तीन मंजिला इमारत थी, इसके ऊपर तीनों क्लासेस थी, 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें भी शहीद हो चुके हैं और टीचर भी इसमें शहीद हो चुकी है और 47 से करीब जख्मी है, 25 जो है उनको शिफ्ट किया गया लेडी रेटिंग हॉस्पिटल। एक्चुअली 10 मैंने आपको बताया, तीन क्लासेस थी उसमें बच्चे थे और अभी मजीद हमें खतरा है, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन हलाकतों का खदशा ज्यादा है तो शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी आपके सामने बंद गई है, रेस्क्यू में मुश्किलात आ रही है।

0: नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद।

0: यारा अॼु कल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जीअं मिरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस
3: 03013992836।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़, GA FM 94।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमुन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूम

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबुह 9:05

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

और तीन मंजिला इमारत थी, इसके ऊपर तीनों क्लासेस थी, तो 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें भी शहीद हो चुके हैं और टीचर भी इसमें शहीद हो चुकी है और 47 से करीब जख्मी है, 25 जो है उनको शिफ्ट किया गया लेडी रिटन हॉस्पिटल। एक्चुअली 10 मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी उसमें बचे थे और अभी मजीद हमें खतरा है, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन हलाकतों का खदशा ज्यादा है, तो शिफ्ट कर रहे हैं। फौरी आपके सामने तंग गली है, रेस्क्यू में मुश्किलात आ रही है,

पिशावर में निजी स्कूल जे छित किरण जे नतीजे में 34 शागिर्द ऐं हिक लेडी टीचर दबजी फोत, 53 जख़्मी। पुलिस स्कूल जे मालिक ऐं प्रिंसिपल खे गिरफ़्तार करे वरितो। केपी हुकूमत साने जी जांच लाइ कमेटी जोड़े छॾी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी मुतासिर स्कूल जो दौरो बि कयो। पोतियुनि जे वारिसनि लाइ 10-10 लख रुपया इमदाद जो ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ बि वाक़िए जी रिपोर्ट तलब करे वरिती। ज़ख़्मियुनि खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत। CCPO पिशावर चयो आहे त वाकियो संगीन लापरवाही जो नतीजो आहे। 16 घिटियुनि में गैर मयारी स्कूल क़ाइमु कयो वियो हो। फोत थी वियल समूरनि ॿारनि जे जनाज़े नमाज़ बाद मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में आलियन अखियुनि सां तदफ़ीन कई वई।

0: 214 members rose in favor of the motion. Fifty-six members rose against the motion.
1: पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज एमरजेंसी की मंजूरी ॾेई छॾी। अपोजिशन जो सख्त एहतजाज। हुकूमत खिलाफ नारेबाजी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी पारां केपी में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज वारी पेश कयल रिथ अक्सरियत राय सां मंज़ूर कई वई। तहरीक जी हिमायत में 214 ऐं मुखालफ़त में 54 वोट पिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त काबुल में चांहि पीअण बाद TTP खे छॾियो वियो। ॿुधायो जेलनि मां दहशतगर्दनि खे कीअं आज़ादु कयो। केपी जी सूरतहाल जा ज़िमेवार PTI जा कुझु माण्हू आहिनि। असां सदाई आइन ते अमल करे कयो आहे। जमहूरियत जो दर्स न ॾिनो वञे। दहशतगर्दीअ खे हाणे ख़तम न कयो त कॾहिं बि ख़तम न थींदी। केपी में एमरजेंसी खां बचण लाइ आख़िरी मिंट ताईं कोशिश कई। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ केपी हुकूमत खे गॾु रखण जी हर मुमकिन कोशिश कई, पर सुहेल आफरीदी जो रवैयो गॾु हलण वारो न हो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी आछ कंदे चयो आहे त सुहेल आफरीदी कंहिं बि ऑपरेशन में फ़ौज सां गॾु न हो। चवंदो हो त फ़ौज सां गॾु हलण सियासी तौरु अफोर्ड नथो करे सघां। ॻाल्हियुनि मां बि ही उथी विया हुआ। असां आख़िर ताईं वेठा रहियासीं। केपी में गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी लॻाए वफ़ाक़ खे ख़तरे में विधो वियो आहे। इसहाक़ डार मौलाना फज़ल रहमान खे वॾे वज़ीर जी तब्दील लाइ न चयो हो। छा वॾो वज़ीर तब्दील करण सां दहशतगर्दी ख़तम थी वञे हा? पार्लियामेंट में ख़िताब कंदे PTI चेयरमैन बैरिस्टर गुहर चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान राणा सनाउल्लाह, मोहसिन नक़वी ऐं आज़म नज़ीर जो किरदारु सारा जोॻो हो। असां हर तरीक़े सां दहशतगर्दी जी मुज़म्मत कई। रुॻो आख़िरी लाइन ते इख़्तिलाफ़ थियो। हुननि 72 कलाकनि में एमरजेंसी लॻाइण जो चयो। असां जिरगे ऐं असेंबली जे फ़ैसिले तहत हलण जी ॻाल्हि कई हुई। अपोज़िशन लीडर महबूद ख़ान अचकज़ई चयो त मोहसिन नक़वी सां कॾहिं बि मुलाक़ात नाहे थी। PTI वारा बि आचर ते लॉन्ग मार्च ख़तमु करण लाइ तयार थी विया हुआ। सूमर ते बानी सां मुलाक़ात बि तय हुई। मौलाना फज़ल रहमान सभु कुझु ॿुधाए चुको आहे। ॻाल्हियुनि वारे अमल खां अपोज़िशन पाणधार थी, पर ॾेई अंसरनि सबबि ॻाल्हियुनि जो अमल मुतासिर थियो। पार्लियामेंट में ख़िताब कंदे PP सेनेटर शेरी रहमान चयो त ॻाल्हियुनि दौरान बैरिस्टर गोहर जो रवैयो मुस्बत हो। अपोज़िशन जा घणा मुतालबा बि तस्लीम थी विया हुआ। अपोज़िशन पाण ॻाल्हियुनि खां परे थी। पार्लियामेंट जे इजलास दौरान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई सां मुलाक़ात। ॿिन्ही अॻवाणनि
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।